मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की नवी तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 22 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दोस्तों, सुबह की सुनहरी किरणों के साथ हम लेकर आए हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और ढेर सारा मनोरंजन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। नमस्ते लखनऊ की इस खुशनुमा सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। श्रोताओं, इस प्यारी सी सुबह में कहीं मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं, कहीं चाय की प्यालियों से उठती भाप दिन की शुरुआत का एहसास करा रही है, और आज तो रिमझिम फुहारों ने भी समा बांध दिया है। वास्तव में सुबह का यह समय केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि अपने सपनों को फिर से जीवन में भरने का संदेश देता है। तो चलिए हम भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और हर जरूरी जानकारी के साथ। सुबह के 6 बजने को है और अब समय है रुख करने का देश और दुनिया की खबरों की ओर। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश

0: न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं और श्रोताओं, ये समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। कार्यक्रम में आज भेंटवार्ता सुनिए, खरीफ में सह फसली खेती, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शशांक शेखर सिंह। आपसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं। खरीफ में जहां सह फसली खेती करना चाहते हैं, वैसे तो आप फर्दा खेती करते हैं, लेकिन किसी मुख्य फसल के साथ कोई सह फसल उगाना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबेडकर नगर से वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक शेखर सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि खरीफ में सह फसली खेती की क्या कुछ संभावना है।
3: जी, खरीफ में किसानों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि उनको सह फसली खेती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर मौसम और कीट बीमारियां, ऐसे बहुत सी हमारी समस्याएं हैं जिसके कारण कि कोई हमारी मुख्य फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर हमारी सह फसल साथ में रहेगी तो वो अच्छा इनकम हमको दे सकती है और नुकसान से हमको, किसान को, वो बचा सकती है। खरीफ में हमारी एक अरहर मुख्य फसल होती है।
2: हाँ।
3: तो हम ज्यादा जोर अरहर के साथ जो दूसरी फसलों को लिया जा सकता है उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे।
2: तो कौन कौन सी फसलें हैं जिसको अरहर के साथ सह फसल के रूप में ले सकते हैं?
3: जैसे अरहर के साथ हम मक्का ले सकते हैं, अरहर के साथ उर्द मूंग ले सकते हैं, तिल भी ले सकते हैं अरहर के साथ, और एक बुंदेलखंड या जो हमारे थोड़ा सा दूसरे क्षेत्र हैं
2: जी,
3: वहाँ पे मूंगफली के साथ हम बाजरा ले सकते हैं।
2: तो शुरुआत करें कि जहाँ अरहर के साथ मक्का उगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो कौन कौन सी खास बातें हैं?
3: पहले प्रजाति के चयन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए।
2: हाँ।
3: प्रजाति हमें ऐसी रखनी चाहिए जो कि ज्यादा उत्पादक हो, जैसे हमारी बहार है, नरेंद्र अरहर 1 है, और उसी तरह से मक्का में प्रयास करना चाहिए कि जैसे जौनपुरी सफेद है मक्का जो

0: हाइब्रिड को अवॉइड करना चाहिए।
1: यानी देसी हो या
0: हाँ
1: संकुल
0: हाँ
1: मक्का।
0: संकुल मक्का ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 जुलाई तक हम इन फसलों की बुआई कर दें। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें होती है, लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी।
1: जी
0: तो हम अरहर में लाइन से लाइन की दूरी जो है 90 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर, मतलब
1: लगभग
0: कि
1: 3 फीट।
0: हाँ 3 फीट, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन जो है वो हम 3 फीट के रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो हम 25 सेंटीमीटर करीब रखेंगे।
1: और अरहर की दो लाइनों के बीच
0: और दो
1: में,
0: लाइनों के बीच में हम जो है मक्के की एक लाइन हम डाल देंगे, जिसमें पौधे की पौधे दूरी जो है 20 सेंटीमीटर हमको रखना है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जहां अरहर के साथ उर्द मूंग या तिल उगाना है वहां।
0: इसमें एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा
1: जी
0: सभी फसलों के लिए, जैसे अरहर मक्का है या अरहर उड़द हम कर रहे हैं, अरहर तिल कर रहे हैं, एक खरपतवार हमारे बहुत बड़ी समस्या रहती है खरीफ की फसलों में।
1: जी
0: तो खरीफ की फसलों में अगर रासायनिक नियंत्रण किसान करना चाह रहा है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा वीट कंट्रोल के लिए है पेंडीमेथिलिन,
1: अच्छा, खरपतवार नाशक।
0: खरपतवार नाशक। पेंडीमेथिलिन की 3.3 लीटर की मात्रा हम 1 हेक्टेयर के लिए संस्तुत करते हैं,
1: अगर एकड़ की बात करें तो लगभग 1.25 लीटर।
0: लगभग 1.25 लीटर के आसपास। जी, 1 एकड़ में।
1: तो ये बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें।
0: हाँ, ये थोड़ा सा तकनीकी चीज है जिसको मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी बार आप ये रसायन खरीद तो लेते हैं लेकिन प्रयोग करने की जानकारी सही न होने से उसका फायदा नहीं मिलता या नुकसान उठाना पड़ता है। पेंडीमेथिलीन को स्प्रे करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसको सदा जो है कट नाजिल से ही स्प्रे करना चाहिए।
1: जी
0: अक्सर किसान जो है जो नाजिल यूज करते हैं दवा खरीदने के लिए, जिसको कोन नाजिल बोलते हैं, जिसमें फुहारा बनता है, उस नाजिल से पेंडीमेथिलीन को कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए,
1: जी
0: कट नाजिल से स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, आगे से पीछे की तरफ स्प्रे करते हुए आना चाहिए।
1: जी
0: उसमें होता क्या है कि ये एक लेयर बना लेती है।
1: हाँ
0: और तीसरी, क्या ध्यान देना है कि किसी भी स्थिति में 48 घंटे के अंदर इस रसायन का स्प्रे कर देना है, नहीं तो ये फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है देर करने पे।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में सा फसली खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी किसान भाइयों, मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 94-15-16-57-58, 9415-16-57-58, 94-15-16-57-58।
1: डॉक्टर शशांक शेखर सिंह साहब आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में सफसली खेती कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ में सह फसली खेती, कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शशांक शेखर सिंह, आपसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आई होगी। कृषि चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। आइए सुने आज का सुविचार, हंसने की कला।
3: प्रसन्नता जीवन का अद्भुत सौंदर्य है। अंतःकरण की स्थिति का दूसरा नाम प्रसन्नता है। यह चित्त हल्का करने का सात्विक भाव है। निश्चल और सरलता इसका प्रथम उपाय है। तत्काल आनंद देने के अलावा यह आयु और कीर्ति बढ़ाती है। प्रसन्नता आंतरिक संवेदना है। शरीर और मन के लिए प्रसन्नता स्वास्थ्यवर्धक और मित्र तुल्य है। यह बुद्धिमत्ता बढ़ाती है। प्रसन्नता प्राप्त करना अपने वश में है, इसके लिए बार बार सद प्रयास करना पड़ता है। ऐसा न करने पर प्रसन्नता के स्थान पर तनाव बढ़ने लगता है। आंतरिक प्रसन्नता सुखी बनाती है। बड़े दुख को छोटी प्रसन्नता कम करती है। आवश्यकताएं कम करना प्रसन्नता के लिए वरदान है। इसके रसायन में संघर्ष की सफलता का रहस्य छिपा रहता है। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय है कि कुछ समय के लिए बालक बन जाएं। सरल चित्र, आनंदमय स्वभाव वाले भगवान स्वरूप बच्चों के साथ तन्मयता में खेलकर आनंद का अनुभव करें। गीत, भक्ति रस के संगीत प्रसन्नता बढ़ाते हैं। चेतना के

0: विकास में एक विशेष गुण जो मनुष्य को पशु से ऊपर सिद्ध करता है वह है मनुष्य की हंसी। खिलखिलाकर हंसने का वरदान प्रकृति में मनुष्य को मिला है। यह चेतना की एक विलक्षण अवस्था है। दूसरों पर हंसना पीड़ादायक है, स्वयं पर हंसना आत्मबोध। हंसी गंभीरता और मूर्खता का विलोम है। जैन धर्म का जन्म ही हंसी से हुआ। एक निश्चल निर्मल हंसी प्रज्ञा और आत्मचेतना का सबसे प्रखर रूप है। हंसी से तनाव भागता है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हंसी को उत्सव ही बना दिया। कृतज्ञता परोपकार और करुणा के बिना प्रसन्नता की हंसी नहीं आती। आंखें मिलाकर प्रसन्नता मिलती है। सच्ची हंसी की भाषा आह्लाद के व्याकरण से जन्म लेती है। हंसने के समय मनुष्य देवता हो जाता है। यह दुर्लभ संयोग दैवी गुणों के विकास से आता है। किसी के गुण की प्रशंसा करना, परोपकार करना और हंसने के भाव में विचार महान बनते हैं। हंसने की कला नैसर्गिक है, यह देव दुर्लभ गुण बनाती है। छोटे बच्चे दिन में 300 बार हंसने के कारण ही ईश्वर के रूप कहलाते हैं। वयस्क मात्र 17 बार हंसते हैं। दिन में कम से कम 3 बार खिलखिलाकर हंसने वाले चिकित्सक के पास नहीं जाते। हंसना व्यायाम है, इससे रस ग्रंथियां पाचक रस का निर्माण करती हैं। हंसना सकारात्मक और रचनात्मक क्रिया है, इससे एंडार्फिन दर्द निवारक रसायन का स्राव होता है। प्रसन्नता से जीवन के रंग खिल उठते हैं। यह एक नैसर्गिक उपहार और शाश्वत आनंद है। हम जितनी अधिक प्रसन्नता और हंसी लुटाते हैं वह उससे अधिक हमारे पास आती है। प्रसन्नता से परिपूर्ण व्यक्तित्व सम्मोहित करता है। हंसी मन की गांठें खोलती है। हंसने से फेफड़े दृढ़ होते हैं। प्रसन्नता यौवन का सिंगार है। यह लक्ष्य प्रदान करके निंदा निराशा से बचाती है। हंसना जीवन में एक योग है। हंसते समय नकारात्मक भाव विस्मृत हो जाते हैं। किसी को हंसाना एक बड़ी कला है। हंसने के क्रम में आता है मुस्कुराना। यह शुद्ध हृदय का स्वभाव है। प्रसन्नता रस एवं आनंद की ज्योतिर्मान रेखा है। स्वाभाविक मुस्कान अलौकिक प्रीति का संचार करती है। हंसने की कला मुखमंडल चमकाती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिन समस्याओं का समाधान हंसी करती है। हृदय विराट बनाने के साथ सेवा करने की प्रेरणा देती है। प्रसन्नता की हंसी जीवन में उस औषधि की तरह है जो मनुष्य के दुखों और घावों को ठीक करने में सर्वाधिक प्रभावकारी है। हंसी वह चमत्कारिक योग है जिससे अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है। हंसने की मूल आत्मा प्रकृति के इंद्रधनुषी रंग में है। चाहे पहली किरण में फूलों पर गुनगुनाते भ्रमर हों, तितलियां चहचहाते पक्षी हों या मन के आंगन में खिली हुई प्रसन्नता, लय हंसी है। हंसना स्वाभाविक व्यायाम है। आकर्षित करने और संबंध को दृढ़ रखने में हंसने की कामना हर स्थिति में है। प्रसन्नता और हंसी जीवन का मंगल प्रभात है।
1: अभी आपने सुना आज का सुविचार हंसने की कला। वाचन स्वर था डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से समय आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। आज है मंगलवार और ऐसा माना जाता है कि आज का दिन भगवान बजरंग बली को बेहद पसंद है। तो आइए आज हम भी अपनी आराधना का आरंभ करें उन अनन्य सेवक पवन पुत्र हनुमान जी के स्मरण से, क्योंकि उनका स्मरण भी मन को असीम शक्ति और साहस से भर देता है। तो चलिए हम भी चलें उनकी शरण में और

जय श्री हनुमान। श्रोताओं, जीवन में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ईश्वर न्याय करता है, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा हमारे अपने स्वयं के हाथों से लिखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों की गति न्यारी।

श्रोताओं, ईश्वर का नाम जीवन में सबसे बड़ा सहारा है। राम और सिया, ये दो दो अक्षर के नाम मन को शांति, जीवन को दिशा और आत्मा को संबल देते हैं। तो आइए सुबह सवेरे हम भी सिया राम के चरणों में नतमस्तक होते हुए सुने ये पावन भजन।

जी हाँ श्रोताओं, यूं ही नहीं कहा जाता कि जिसके मन में राम बसे वो सभी सुख पाता है। श्रोताओं, सांसारिक धन दौलत क्षण भंगुर है, लेकिन प्रभु भक्ति का धन अमूल्य और चिरस्थायी है। भक्ति के इसी आनंद और आत्मिक समृद्धि का सुंदर भाव लिए आइए सुने ये पावन भजन।

श्रोताओं, परमात्मा दूर कहीं नहीं है, वे तो हर हृदय में प्रेम, करुणा और विश्वास के रूप में विराजमान है। आवश्यकता केवल उन्हें सच्चे हृदय से महसूस करने की है।

इन्हीं भक्तिमय सुरों के साथ अब आज का आराधना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ईश्वर से यही मंगल कामना है कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, भक्ति में इस पावन बेला में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 217।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्री राम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत परगांवकर एवं संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
0: अपने श्रोताओं को हम बता दें, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहान असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायां असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमानस्य 75 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रामार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का नमस्ते लखनऊ में। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज नीना सोनकर जानकारी दे रही हैं भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के विषय में। क्या बता रही हैं, आइए सुने।
2: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में मैं नीना सोनकर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे भोजन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन वही सब सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम अक्सर बड़े पोषक तत्वों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम जानेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं और उनके कौन कौन से प्रकार हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कैसे लाभकारी होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें हम विटामिन्स और मिनरल्स कहते हैं, जिनकी हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनके बिना शरीर की सही तरीके से कार्यप्रणाली संभव नहीं है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और अन्य तरह की बीमारियां। हम बात करेंगे सबसे पहले विटामिन्स की। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स। ये सभी हमारे शरीर के लिए अलग अलग तरह से फायदेमंद हैं। जैसे कि विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है और हमारी त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें सर्दी जुकाम से बचाने में मदद भी करता है। सर्दियों के मौसम में विटामिन सी का सेवन खासकर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी, जिसे हम अक्सर धूप का विटामिन भी कहते हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है। ठंड के मौसम में जब सूरज की रोशनी कम मिलती है, तब हमें विटामिन डी युक्त आहार जैसे कि दूध, अंडा और मशरूम का सेवन करना चाहिए। अब बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम आदि शामिल हैं, जो शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आयरन खून में

0: हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है और शरीर में ऑक्सीजन के संचार को सही बनाए रखता है। सर्दियों में अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती है, ऐसे में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे पालक, सेब और चुकंदर का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है और पोटेशियम शरीर में द्रव्य संतुलन बनाए रखने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। श्रोताओं, जिंक भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। सर्दियों में जब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है तब जिंक युक्त आहार जैसे कि कद्दू के बीज, दही और नट्स का सेवन हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैग्नीशियम भी शामिल है जो हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अच्छी नींद पाने में मदद करता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करने के तरीकों पर भी बेहद ध्यान देना जरूरी है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करने के तरीकों पर बात करें तो आप अपने दैनिक आहार में विभिन्न प्रकार के ताजे फल और सब्जियां, नट्स, दालें और डेयरी उत्पाद शामिल कर सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और हमारे शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में जब हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, तब इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन बेहद जरूरी हो जाता है। श्रोताओं, पूरी उम्मीद है कि आज सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नीना सोनकर से ये जानकारी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही अब स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज शाम 6:30 से आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे अपने दिल्ली केंद्र से। प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा कन्नौज और पीलीभीत जिलों की खबरें। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाप्त फरमाइएगा शेरे नशिश्त। शुरका होंगे डॉक्टर जाहिद अली दानिश, अहमद उल्लाह खान, अजर नुमानी, मोहम्मद इरफान सागर और डॉक्टर जावेद अल्लाह खान जावेद नसीमी। आज ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगा। प्रातः 7:31 पर जानकारी और मनोरंजन का खजाना लेकर आएगा कार्यक्रम आज सुबह। अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः 7:10 से सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। आज का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे रविशंकर देहाती व साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत। लोक रंग कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा प्रातः 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:45 पर। बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज बहनें सुन सकेंगी फरमाइशी फिल्मी संगीत हेलो अपराजिता के अंतर्गत। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता। बातचीत का विषय रहेगा

खरीफ मक्का की उन्नत खेती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रभाकर सिंह, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। रात्रि 10:30 से सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा अलका सिंह के बांसुरी वादन का। हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें, आज शाम 6:30 से सुनिएगा आईसीसी विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम विविधा। दोस्तों, आज की ये पेशकश समर्पित है आकाश की अनदेखी चट्टानों को, जो न सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्य समेटे हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी एक सवाल बन सकते हैं। आज यानी 30 जून को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस। दुनिया भर में आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस, या फिर आप कह सकते हैं एस्टेरॉइड डे के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन खासतौर पर क्षुद्र ग्रहों और उनके प्रभाव से होने वाले संभावित खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। एस्टेरॉइड डे का मकसद लोगों के बीच क्षुद्र ग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाना और इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को सतर्क करना है। दोस्तों, शायद आपने भी कभी कोई खबर सुनी हो कि एक विशाल उल्का पृथ्वी के पास से गुजरेगा, या फिर आपने सुना होगा कि डायनासोर का विनाश क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टक्कर के कारण हुआ था। तो आइए आज बात करते हैं इन रहस्यमयी अंतरिक्ष पिंडों की, जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आज के कार्यक्रम में कोशिश करेंगे हमारे ब्रह्मांड के कुछ अनछुए रहस्यों को जानने की। तो आइए निकल पड़ते हैं छूने आसमान। तो साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आपको ले चलेंगे हम सितारों के पास तक।

दोस्तों, शुद्र ग्रह वो चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ग्रहों की तरह आकार में ये बड़े नहीं।

होते। इनमें से अधिकतर मार्स और जुपिटर के बीच के एस्टेरॉइड बेल्ट में ही पाए जाते हैं। कुछ तो पृथ्वी की कक्षा में भी कभी कभी आ जाते हैं और तभी ये बनते हैं हमारी चिंता का कारण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसका कारण था एक उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह का वायुमंडल में फटना, और इससे हमारी धरती को, हमारी प्राकृतिक संपदा को बहुत हानि हुई थी। इस घटना के प्रतीक के रूप में भी 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है।

अब बात आज के दिन के महत्व की। तो दोस्तों, एस्ट्रॉइड डे मनाने का अपना अलग महत्व है। इस दिन को खास तौर पर क्षुद्र ग्रह से होने वाले खतरनाक प्रभावों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, उनसे जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दरअसल आज भी कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्षुद्र ग्रह वास्तव में क्या होता है और इसके प्रभाव से हमारी दुनिया में क्या कुछ हो सकता है या कितना विनाश हो सकता है। ऐसे में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अब सवाल एक मन में ये भी उठता है कि अगर ये इतने खतरनाक है तो हम इनका अध्ययन क्यों करते हैं। तो दोस्तों, एक तो इनमें हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हुए हैं, और दूसरा, अगर भविष्य में कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़े तो हम उसे समय रहते रोक सके। और हाँ, कुछ क्षुद्र ग्रहों में बहुमूल्य खनिज भी होते हैं जिससे भविष्य में अंतरिक्ष खनन का रास्ता भी खुल सकता है, जो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने का विचार आया एक वैज्ञानिक से, डॉक्टर ब्रायन मे, जो खुद एक खगोल शास्त्री होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध गिटारिस्ट भी है। उन्होंने वैज्ञानिकों और आम जनमानस को क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूक करने का संकल्प लिया, और साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे के रूप में मान्यता दी।

तो दोस्तों, क्षितिज पार जो चुपचाप घूमे, अनगिनत कहानियां अपने संग लाए, कभी चेतावनी कभी खजाना, ये चट्टाने भी तो इतिहास दोहराए। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस पर हम न केवल अंतरिक्ष की अनंत संभावनाओं को जानें, बल्कि विज्ञान, सुरक्षा और जिज्ञासा की इस यात्रा का हिस्सा भी बनें। याद रखिए, अंतरिक्ष में कोई चीज छोटी नहीं होती, क्योंकि हर क्षुद्र ग्रह एक बड़ी कहानी कहता है। फिर मिलेंगे विविधा के अगले किसी अंक में एक नए सफर में। तब तक आकाश की ओर नजर उठाइए, कौन जाने कोई कहानी वहां इंतजार कर रही हो। दीजिए अपनी दोस्त रिंकी शर्मा को आज की विविधा से अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म।

0: धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई कल अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में कल 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पीलीभीत सहित प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
1: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में

0: प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
1: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम डिजिटल युद्ध स्मारक त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने मुरादाबाद में विकास कार्यों, राजस्व, कानून व्यवस्था तथा लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना के संबंध में मंडलीय समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। स्टैंप और न्यायालय शुल्क तथा पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
2: स्टैंप विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्लियरिटी न होने के कारण से एक भ्रम स्थिति बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ उसको हम निरस्त करते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार कल से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल HSD की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 12 जून को ये अस्थायी नियामक उपाय लागू किए थे। इसके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक या प्रति वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल HSD देने की समय सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वो ईंधन की खरीद खुदरा पंपों के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों से करें। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में 15 बेड के निजी वार्ड और ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल में 13 बेड के अत्याधुनिक ICU का उद्घाटन किया। सांसद निधि से तैयार इन दोनों सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने कहा कि गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिरोजाबाद जिले के फरीहा थाना क्षेत्र के चिडरई गांव में बीती रात तेज आंधी के कारण एक ई रिक्शा पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एटा जिले के अबागढ़ से करीब 8 सवारियों के साथ फरीहा आ रहे ई रिक्शा पर अचानक पेड़ गिर जाने से ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया और सवारियां पेड़ के नीचे दब गईं।

0: इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय 5 सवारियों की मौत हो गई। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दैवीय आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 36 घंटों में कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। पीलीभीत जिले में बीती रात से हो रही वर्षा से वहां के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर सहित कुछ अन्य जिलों में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिनों के भीतर मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: एक नई सुबह, नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सुबह और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। आज के इस हसीन खूबसूरत सफर में मेरे और आपके साथ हैं
1: मैं कीर्ति विश्वकर्मा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: तो कीर्ति, एक बात बताइए
1: जी,
0: आज सुबह आपकी नींद किसने खोली? मेरा मतलब है अलार्म ने, चिड़ियों की चहचहाहट ने, या फिर घर में किसी ने बड़े प्यार से आवाज लगाई कि कीर्ति उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है।
1: इतनी सुबह कोई नहीं जागता, मैं ही जागती हूँ। अलार्म बहुत तेजी से जगाता है मुझे कि अब उठ जाओ, जाना है।
0: अच्छा, मुझे लगता है कि आजकल जो लाइफ स्टाइल हो गया है ना, इसमें अलार्म की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है।
1: बिल्कुल, आपको पता ही नहीं चलता ना, आप मोबाइल के स्क्रीन में डूबे रहते हैं और जब नींद आती है तो भी आप डूबे रहते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है रिमाइंडर और अलार्म की, आपको समय की जो याददाश्त है वो बनी रहे।
0: बिल्कुल, लेकिन पता है मैं कुछ ऐसा लोगों को भी जानती हूँ कि जिनकी नींद चाय की खुशबू से खुलती है।
1: हाँ, ये बात तो है
0: भाई, हमारे आपके घर में ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं। जैसे ही रसोई में अदरक और इलायची की महक आती है ना, तो बस आंखें खुल जाती, उन्हें किसी अलार्म की, किसी की आवाज की, किसी के बुलाने की जरूरत नहीं।

0: पड़ती
1: अब
0: है।
1: भाई जिसे बैठे बैठे मिल जाए उसके लिए तो यही बात हो जाती है ना, वरना जिसे बनानी है चाय उसके लिए अलग बात हो
0: नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं,
1: जाती
0: मुझे भी चाय बड़ी पसंद है और मैं खुद से उठती हूँ इसलिए कि मैं चाय बनाऊं
1: क्या बात
0: और मैं
1: है।
0: पी लूं। तो भाई ऐसे चाय लवर्स जो चाय को बहुत पसंद करते हैं, वो सब अपना अपना चाय का कप लेकर के बैठ जाएं और अगले आधे घंटे तक मैं और कीर्ति ऐसे ही बातें करते रहेंगे और आपकी चाय का आनंद बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि भाई भाग दौड़ तो शुरू होने ही वाली है। जैसे ही आप काम पर निकलेंगे तो बस भाग दौड़ शुरू
1: एकदम
0: हो जाएगी, लेकिन इस भाग दौड़ में कुछ पल अपने लिए, अपनों के
1: अपने
0: लिए
1: के
0: निकालना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब आप अपने रेडियो पर पसंदीदा प्रोग्राम सुनते हैं तो यकीन मानिए पूरा दिन बिल्कुल सुकून से भर जाता है।
0: जी हाँ, और आज तो फिर 30 जून है,
1: हाँ
0: महीने का आखिरी दिन भी है,
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इस महीने का स्वागत किया था हमने। समय
1: हाँ,
0: तेजी से, बहुत
1: लेकिन
0: तेज
1: अभी
0: रफ्तार से
1: कल
0: चल रहा
1: दूसरे
0: है।
1: महीने की स्वागत की तैयारी शुरू हो जाएगी आज से।
0: बिल्कुल, तो ढेर सारी बातें अभी हम और करेंगे, लेकिन हमने वादा किया है कि चाय का स्वाद जो है थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, तो एक मीठा मीठा सा नगमा सुनवा दे अपने श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म चांदनी का ये खूबसूरत सा गीत। तो उम्मीद है कीर्ति के हमारे श्रोताओं को ये नगमा पसंद आया होगा। क्यों
1: बिल्कुल क्यों नहीं, इतने मीठे मीठे गीतों से आपने शुरुआत की है कार्यक्रम की, हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा। और इस गीत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत। लेकिन रिंकी जी, अगर मैं पूछूं कि हमारे साथ कौन सी वो चीज है जो चलती है, तो आप क्या बोलेंगे?
0: भाई देखिए, अपनों का प्यार, अपनों का साथ, है ना, ये हमेशा हम चाहे कहीं भी रहे हमारे साथ चलता है और ऐसा होना भी चाहिए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, आपको भी दूसरे के साथ रहना पड़ेगा जब उसको आपकी जरूरत हो।
1: और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे साथ चलती है, वो है हमारी सोच।
0: बिल्कुल, हमारी सोच, हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हमें लोग कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, किस नजर से हमें देखेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व पर।
1: और यही चीजें बताती भी हैं कि जो हम पीछे लेके चल रहे हैं वो नकारात्मक है या सकारात्मक है, प्यार है, मन में दुख है या पीड़ा है, या किसी के लिए कड़वाहट है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। तो जितना हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे उतना ही हमारा जीवन आगे की ओर अच्छा ही बढ़ता जाएगा।
0: बिल्कुल, और इसमें हमारी मदद करते हैं सुविचार, जो लोग कह गए हैं और वो वाकई वर्क करते हैं, वो जीवन में बहुत काम आते हैं। तो क्यों ना अपने श्रोताओं को आज का सुविचार बता दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, फटाक से हम अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज का सुविचार क्या कहता है। तो आज का सुविचार कहता है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते।
0: वाह कीर्ति, क्या बात कही कि वो काम करने का अपना ही मजा है जिसे लोगों ने मान लिया हो कि ये तो भाई तुमसे नहीं होगा।
1: हाँ, जीवन में देखिए चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी सकारात्मक होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे उस चैलेंज से अगर किसी को मुश्किल में पड़ जाए या किसी को परेशानी हो तो वो नहीं सही है। हम आगे बढ़े और दृढ़ता के साथ में आगे बढ़े तो ये चैलेंज जरूरी है कि हम अपने दिल में ये जिद रखे कि हमें तो बस अब करके दिखा देना है।
0: बिल्कुल, खुद पर विश्वास हो और दिल में हो एक जिद।
1: जिद, ये जिद जो है वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। और चलिए इसी बात पर एक गाने को भी हम एंजॉय कर लेते हैं।

0: दिल ये जिद्दी है। इस गाने को अभी एंजॉय कर रहे थे आप विशाल ददलानी की आवाज में, और ये गाना था फिल्म मैरी कॉम से। और रिंकी जी, दिल जिद्दी है, आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के साथ साथ देखिए हमारे प्रोग्राम में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल है कि हम अपने प्रोग्राम में अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन।
1: बिल्कुल, हमारा कार्यक्रम ही इंफोटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, तो एंटरटेनमेंट हो गया है, अब इन्फॉर्मेशन की बारी है, तो कुछ जानकारी अपने श्रोताओं को दी जाए और
0: आज
1: के पन्नों में झांका जाए।
0: हाँ बिल्कुल, आज का दिन देखिए इतना खास है। सुबह सुबह का मौसम कितना रुमानी सा हो गया था, मतलब बारिश की बूंदे पड़ रही थी और चारों तरफ जैसे लग रहा था कि आ हा हा
1: बिल्कुल
0: मजा ही आ जाएगा।
1: स्टूडियो आने में भी एक अलग सी उत्सुकता थी कि कैसे पहुंचे, है ना, बारिश हो रही थी हल्की हल्की,
0: काश उड़ करके आ जाते सुपरमैन की तरह। और बताओ रिंकी जी, आज इतिहास की बात कर रहे हैं तो आज का दिन ना बहुत खास है, क्योंकि 1938 में आज ही के दिन सुपरमैन जो कैरेक्टर है ना, वो पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर आया था नजर। और बच्चों के लिए आप तो जानते हैं इसकी सबसे पसंदीदा सुपर हीरो है ये सुपरमैन, हम लोगों ने भी इसको खूब एंजॉय किया है, तो आज का दिन सुपरमैन के नाम।
1: सुपरमैन के नाम और हमारे बचपन के भी नाम, क्योंकि सुपरमैन हम सबका फेवरेट रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज ही के दिन 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में विशाल उल्कापिंड विस्फोट की घटना हुई थी,
0: और इसी के लिए ही आज के दिन को हर साल जो है मनाया जाता है अंतरिक्ष शुद्ध गृह दिवस के रूप में,
1: इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध गृह दिवस के रूप में हम आज के दिन को मनाते हैं, तो ये दिवस भी आज मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, और आज ही के दिन 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना शोध पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का दुनिया के सामने रखा था।
1: बहुत खूब, और आपको बता दें कि 1937 में दुनिया का पहला आपातकालीन टेलीफोन नंबर 999 ब्रिटेन में शुरू किया गया था, और आगे चल के इसकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि अब लगभग लगभग हर देश में, हर राज्य में एक आपातकालीन नंबर जरूर होता है।
0: और बिल्कुल,
1: मैं तो ये कहूंगी कि हम सबको ये आपातकालीन नंबर याद होने चाहिए, डायल पे होने चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या या इमरजेंसी बताकर नहीं आती, तो अगर आपके पास ये जानकारियां होती है तो बहुत अच्छा होता है। और ये शुरुआत जो 1937 में हुई ये बहुत खास थी, बहुत महत्वपूर्ण थी,
0: और ये सोच भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। खैर आगे बढ़ रहे हैं हम, और देखिए इतनी सारी हमने आज इतिहास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको डिस्कस कर लिया है।
1: एक और चीज आपको बता दूं और अपने श्रोताओं को भी कि 1966 में विश्व कप फुटबॉल का शुभंकर विली पहली बार प्रस्तुत किया गया था आज ही के दिन यानी 30 जून को। और एक और चीज, सन 2000 की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी थी।
0: देखिए कितना आसान हो गया है आजकल सारी चीजें करना डिजिटली, जब हमारा सिग्नेचर भी डिजिटल हो जाता है तो हमें कहीं डेस्टिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं होती, हम ऑनलाइन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं।
1: देखिए ना, जब कोई चीज शुरू होती है कीर्ति, तो उसकी महत्ता का हमें अंदाजा नहीं होता, उसकी इंपॉर्टेंस का हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब हम उसे इस्तेमाल करने लगते हैं, प्रयोग में आने लगती है, तो हमारी नीड बन जाती है, हमारी जरूरत बन जाती है। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर्स है, अब देखिए सभी के पास, सभी ने अपने फोन पे सेव किया होगा शायद, डिजिटल साइन है, जहाँ कहीं जरूरत पड़े फटाफट हम भेज देते हैं।
0: हाँ, और हमारा काम बिल्कुल चुटकियों में हो जाता है।
1: हाँ, अच्छा हमने अभी बात की कि आज एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है, आज एक और खास दिन मनाया जाता है, पता है क्या?
0: वो है हूल क्रांति दिवस।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि आज ही के दिन बात करें हम 1855 की, तो आज के दिन हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है, जबकि इस बारे में बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं कि जो लोग हैं वो जब अपने
1: जी
0: सुरक्षा और अपने आगे बढ़ने की बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो एक कहीं ना कहीं क्रांति होती है। झारखंड की बात करें, साहिबगंज की है, भोगना डी है, वहां का क्षेत्र में आदिवासी भाइये हैं सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, इन लोगों ने अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूका था। इसे

0: आदिवासी अस्मिता और करो या मरो की लड़ाई के रूप में भी याद किया जाता है।
1: इसके साथ ही आज विश्व सोशल मीडिया दिवस यानी वर्ल्ड सोशल मीडिया डे भी मनाया जाता है कीर्ति।
0: हाँ देखिए, सोशल मीडिया आज हमारे साथ में कुछ इस कदर जुड़ गई है कि भाई नींद है, खाना है, पीना है, मतलब इसके बिना कोई काम नहीं होता है।
1: जी, ये दिन याद दिलाता है कि सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन आपको बताएं कि इसका जिम्मेदारी से उपयोग करना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कई बारी हम स्कैम या फिर दूसरे फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन असल में वो कहीं ना कहीं हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारे जो दिनचर्या होती है, हमारी जो एक कहते हैं ना कि स्वास्थ्य है, उसको भी कहीं ना कहीं हानिकारक मोड़ पर लेकर के आ जाती है। तो आप अपना पूरा ख्याल रखिए और सोशल मीडिया जब भी आप यूज करें बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करें और उसके बारे में डिटेल्स सबसे पहले जरूर पता करें।
1: जी।

0: लव, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुन रहे थे। खूबसूरत सी आवाज सी चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।
1: रिंकी जी, जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मौसम की भी बात हमने आज की, बारिश की बूंदें गिर रही थी ना, तो एक सोच मेरे मन में आ रही थी और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में आती होगी कि जहाँ पे पानी की कमी है, लोग सोचते होंगे कि काश ये बारिश का पानी हम इकट्ठा कर लेते, है कि नहीं
0: जी? सोचते नहीं है बल्कि इसको सोचना ही चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों बूंदें जो धरती पर गिरती हैं वो जाती कहाँ है, बर्बाद ना हो वो। इसीलिए जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2021 में एक अभियान चलाया, आपको पता है उसका नाम?
1: कैच द रेन।
0: जी बिल्कुल करेक्ट, कैच द रेन। और इसका मतलब यही था कि जहां बारिश हो, जब बारिश हो, वहीं उस पानी को सहज लिया जाए। बारिश की हर एक

0: बूंद बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सहजना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: जब एकदम झमाझम बारिश हो तो आप कोशिश कीजिए कि उस पानी को आप सहेज करके रखें और इस तरीके से उसको आप फिर रिफ्रेश करें ताकि दूसरे कामों में लाया जा सके उसे।
0: बिल्कुल, सोचिए ना दोस्तों, कुछ बूंदें हमारी प्यास बुझाती हैं, कुछ खेतों को हरियाली देती हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में पानी बिना उपयोग के बह जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या

0: है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम इस अमूल्य जल को बचा नहीं सकते हैं?
1: बिल्कुल हम बचा सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके अब हमारे सामने हैं, जिसका उपयोग करके हम बारिश की बूंदों को बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए ना, भारत सरकार ने कैच द रेन अभियान भी इसीलिए चलाया है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जल संचयित करके रखें, क्योंकि ये तो हम सबने बचपन से सुना है कि जल है तो
1: जीवन है।
0: जीवन है।
1: चलिए इसी बात पे हम अपने मौसम विज्ञानी से भी बात कर ले, क्योंकि देखिए बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो सबके मन में ये उत्सुकता होगी कि आगे मौसम कैसा होगा।
0: जी हाँ, आज सुबह कार्यक्रम में एक बार फिर है हमारे साथ हमारे मौसम विज्ञानी मोहम्मद दानिश सर। नमस्ते सर, कैसे हैं
2: जी? नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम, मैं अच्छा हूँ।
0: तो बताइए सर, हमारे लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में कैसा रहेगा आज मौसम का हाल?
2: जी, मौसम की बात करें तो लखनऊ वासियों को सबसे पहले बहुत बड़ी शुभकामना है कि मानसून का आगमन अब शुरू हो रहा है,
0: जी,
2: और कहीं ना कहीं जो पिछले कई दिनों से काफी गर्मी का एहसास था, धीरे धीरे यहाँ से कमी आएगा और मौसम इधर अगले 4-5 दिन तक अच्छी वर्षा होगी, गरज चमक के साथ होगी और तेज हवा भी चलेंगी। तो लोगों से गुजारिश है कि जब मानसून का आगमन होता है तो बिजली गिरने की प्रबल संभावना होती है, तो अगर कहीं भी अगर बिजली या तड़क धड़क हो रहा है तो उससे थोड़ा बचाव रखिए, और उस वक्त जैसे घरों में पना ले, पेड़ के नीचे ना खड़ा रहे, क्योंकि वहां पर बिजली लगने की काफी संभावना बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल,
2: तो कुल मिला के कहें तो मौसम यहाँ से थोड़ा खुशनुमा रहेगा और आने वाले अगले 4-5 दिन में अच्छी वर्षा होने की संभावना है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और आज सुबह कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को मौसम के बारे में इतनी खुशखबरी जानकारी देने के लिए।
2: ओके, धन्यवाद,
0: थैंक यू सर, नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: तो भाई कीर्ति, ये हमारे साथ थे आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी, और इन्होंने कितनी अच्छी जानकारियां भी दी, साथ में मौसम की तो जानकारी दी ही कि भाई बारिश तो हो रही है, अच्छा सबको लगता है, लेकिन हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए,
1: विशेषकर बिजली गिरने की संभावना अगर हो तो आप अपने किसी पेड़ वेड़ के नीचे ना खड़े हुए और इससे बचाव, अपनी सुरक्षा करें और मौसम का आनंद उठाएं गीतों के साथ में।

0: कीर्ति देखिए ना, देखते देखते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला।
1: और इस गिलहरियां सॉन्ग के साथ में, जो कि दंगल फिल्म से हमने लिया था, कितना एंजॉय कर लिया।
0: बहुत एंजॉय किया, लेकिन ये भी सच है कि सुबह की अच्छी शुरुआत हो तो पूरा दिन खुशनुमा हो जाता है, क्यों?
1: और मन इसी तरह फुदकता रहता है।
0: तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए नई खुशियां, नए अवसर और ढेर सारी मुस्कानें लेकर आए, यही हमारी शुभकामना है। अब हमें, यानी मुझे रिंकी और
1: कीर्ति विश्वकर्मा को दीजिए इजाजत। कल मिलेंगे इस आज प्रोग्राम के साथ में और बहुत सारे ढेर सारे प्रोग्राम के साथ में, जो कि हम आकाशवाणी लखनऊ से आपके लिए प्रसारित करते रहते हैं। तो अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा
0: और रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब आज के नमस्ते लखनऊ से दीजिए अनुमति। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का

0: गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व के लगभग 20% कच्चे

0: तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रूपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना।

0: माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुख पृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुबह के 8:15 हो चुके हैं और आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली पर समय हो गया है आपके पसंदीदा शो नमस्ते बरेली का।

अरे वाह, 30 जून की इस सुबह ने तो जैसे दिल ही खुश कर दिया हो। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और खिड़की से जरा बाहर देखे, झमाझम बारिश का ये मौसम, ठंडी ठंडी हवा के झोंके और मिट्टी की वो सोंधी सोंधी खुशबू। और सच में बरेली वालों, आज तो जैसे पूरा शहर सावन के रंग में सराबोर हो गया है। वैसे सावन आने में थोड़ा टाइम है, तो ऐसी कड़क चाय अगर सुबह मिल जाए और रेडियो पर बेहतरीन गानों का तड़का मिल जाए तो आपका दिन तो बनना तय है। तो बस अपने हाथों में चाय का कप थाम लीजिए।

और नमस्ते बरेली में हम आपके लिए इस सुहाने मौसम को और भी रोमानी बनाएंगे शानदार गानों और शहर के मौसम के ताज़ा अपडेट्स के साथ।

और गाने की खूबसूरत धुनों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नमस्ते बरेली में। और क्या आप जानते हैं आज 30 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सोशल मीडिया डे के तौर पर मनाया जाता है। आज के दौर में सुबह उठकर अपनों को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग विश करना हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर रील्स देखना हो, सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया की हेल्प से ही आज आकाशवाणी बरेली भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तक सीधे पहुंच रहा है। टेक्निक और कनेक्टिविटी की वजह से और इस खूबसूरत माध्यम का इस्तेमाल पॉजिटिवनेस को फैलाने के लिए और अपनों से जुड़े रहने के लिए किया जाए तो बेहतर है। तो सोशल मीडिया और खूबसूरत यादों को डेडिकेट करते हैं ये गाना।

और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। और अब समय है बरेली की एक बड़ी उपलब्धि को बताने का। तो हमारी शहर बरेली की एक ऐसी शानदार उपलब्धि है जिसे सुनकर हमारे युवाओं का हौसला आसमान पर पहुंच जाएगा। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बरेली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। अर्बन हार्ट में आयोजित बैंकर सम्मान समारोह में डीएम का कहना है कि वित्तीय वर्ष के लिए जिले को 2700 लोन वितरण के लक्ष्य के मुकाबले बरेली ने 2751 लोन वितरित कर 102% का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। तो हमारे जिले के सभी युवा उद्यमियों और लीडर्स को इस बड़ी कामयाबी की बहुत बहुत बधाई। और अब समय है बरेली की रूट्स के बारे में बताने का। तो आज शहर का जो हाल रहेगा ट्रैफिक का, वो कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन कर दिया है। ये डायवर्जन सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और उनके कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि ट्रैफिक

पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। एसपी ट्रैफिक ने कहा है कि परसाखेड़ा रोड नंबर 1 बिलवा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा और बुखारा मोड़ से कोई भी भारी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर सकेगा और थाना प्रभारियों को भी इन खास जगहों पर पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें तो लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को भी बड़े बाईपास से झुमका, बिलवा, विलय धाम, फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी से होकर जाने की परमिशन होगी। साथ ही सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन और एडवाइजरी भी जारी किए हैं। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक पुराना बस अड्डा बंद रहेगा। सैटेलाइट स्टैंड से बसों का संचालन किया जाएगा और साथ ही सभी रोडवेज बसें केवल सैटेलाइट बस अड्डे से ही संचालित होंगी और फिर उसके बाद वहीं से वो रवाना भी होंगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। सुबह की 8:35 और 7 सेकंड हुए हैं और शहर की कुछ और खबरों की बात करते हैं। तो शहर के रामगंगा नगर आवासीय योजना में जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में बीडीए ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जो व्यवस्था है उसे शुरू करने की जो योजना है उस पर बातचीत की जा रही है। वहीं सैटेलाइट बस अड्डा पर परिवहन निगम की बसों का जमावड़ा लगा रहता है, काफी बसेस वहां पर रहती हैं और ऐसे में सैकड़ों की संख्या में ऑटो और ई रिक्शा के खड़े होने से सुबह से लेकर रात तक जो जाम की स्थिति है वो बनी रहती है और हम सबको जो जाम का जो असर है वो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। ऐसे में परिवहन विभाग, पुलिस और परिवहन निगम के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक अलग सर्विस रोड बनवाने का सुझाव दिया है। तो कहा जा सकता है कि सैटेलाइट पर ऑटो ई रिक्शा के लिए अब सर्विस रोड बनाया जाएगा। वहीं हम मॉनसून की अगर हम बात करें तो मॉनसून की दस्तक से बारिश हुई और राहत के आसार भी काफी हो चुके हैं और मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बादलों की आवाजाही बनी हुई है और जिले के काफी जो इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश ने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर दी है। मौसम विभाग के माने तो पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 4.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर जो मौसम है वो काफी सुहावना कहीं ना कहीं बन गया है।

एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो बरेली और आसपास के इलाकों में मॉनसून पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दे रहा है और सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान में बादलों का डेरा है। मौसम विभाग के माने तो आज दिन भर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। जो लोग अपने ऑफिस या फिर काम के लिए बाहर निकल रहे हैं वे अपने साथ छाता और रेनकोट रखना बिल्कुल ना भूलें और जो घर पर हैं वो उनके लिए पकौड़े और चाय का कॉम्बिनेशन आज के सुहावने मौसम को और भी मजेदार बना देगा।

तो अब स्टूडियो की घड़ी की जो सुइयां हैं वो इशारा कर रही हैं कि आज के सफर को यहीं पर विराम देना होगा। हम आपसे कल फिर मिलेंगे 8:15 आपके अपने प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली। ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। समय है लोकगीत का और आज हम आपको सुनाते हैं ये भजन इंदु शर्मा की आवाज़ में, क्योंकि आज का दिन मंगलवार है तो ये भजन तो बनता है।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 MHz पर, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, संसद की भूमिका तथा जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। 30 जून 1989 को अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी अवसर की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की। लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। संसद कानून बनाती है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करती है तथा जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाती है। एक सशक्त संसद ही पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितकारी शासन की आधारशिला भी होती है। संसद महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा संवाद, सहमति और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाती है। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको गाना सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में, पिंटू की पप्पी फिल्म से।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली डालियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए भूमि त्रिवेदी और साथियों की आवाजों में कौशल मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है रश्मि रॉकेट।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए मीका सिंह की आवाज में शुभ मंगल ज्यादा सावधानी। इस फिल्म का गाना लिखा है वायु ने और संगीतबद्ध किया है तन्य।

0: हिंदी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं आया। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से, इसे गाया शशि और डीजे खुशी ने, गगन आहूजा के शब्द हैं और तर्ज बनाई है शशि डीजे खुशी ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीर जी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक

0: अरे हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें दे के जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

कार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं

ढोल, ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

0: प्यार वफा,
1: कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ, वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्य हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं एक गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को आप करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली और सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, आपका अपना प्रोग्राम, आपकी पसंद।

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जून का ये आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के लिए खूबसूरत सौगात तो लेकर आया ही है, साथ ही देश के अलग अलग भागों में भी मॉनसून आ चुका है। और ऐसे में मिट्टी की वो सोनी सी खुशबू हवा में घुली ठंडी, और साथ ही हवा हमारे दिन को और भी सुहाना बना देती है। लेकिन भला ऐसे में दिल गुनगुनाने का करे तो हम खुद को कैसे रोके। तो इस सुहाने मौसम को और भी दिलकश बनाने के लिए हम आपके लिए मॉनसून के कुछ बेहद गाने सुनाएंगे आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सफर। और आप सभी श्रोताओं के नाम और जानते कि आप सभी श्रोता कहां से, देश के किन राज्यों से हमें सुन रहे हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, हमारे ये श्रोता जो कि लिखते हैं कि जो कि दत्ता हैं, और आष्टी जालना से दत्ता ढोंडके भी सुनना चाहते हैं आज के गाने को। और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंग्या, नमन और अपार ढिंग्या, रवि कुमार, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, गुरशबद और राहुल कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला हरियाणा से, गांव कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़ राजस्थान से, अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप और इनका पूरा परिवार, साधी बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, रामचंद मखीजा, काफिर भाई, सविता, स्वाति, महेश कुकरेजा, संध्या, दीपक, मोनू, उन्नति, कीरत, बाधवानी, प्रदीप कुमार और इनका पूरा परिवार, गांव बांडीवाला, फाजल का पंजाब से, ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और गरिमा। रामगढ़ कैंट से हैं महेश मोदी और ठाकुर साहब, साथ ही जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर एक जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा ध्यानपाल, संजय कश्यप, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, अर्णव, सत्यम, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, सोनू कश्यप, शीतल कश्यप और के अलावा राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर सिंह भी हैं, ग्राम दुलापुर यूपी, जिला मुरादाबाद से, छबीलपुर गुन्नौर उत्तर प्रदेश से, हरवेश कश्यप, अर्जी, दिव्यांश और गायत्री, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सतारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा, हिना कौसर, मोहल्ला हलवाइयान, शेरकोट जिला बिजनौर से। और ये हैं कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा और हृदय गुजराती, पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा, टीकमगढ़ एमपी से राजेश कुमार अकेला, यशोदा, राजीव और संजीव, जगदीश ठाकर, रंजूबाई, युवराज, शिवांगी धाकर, ग्राम हिंगोड़ी जिला आलोट, रतलाम एमपी से, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से, पुखराज बरगुजर, कैलाश मिश्री, गोर्धनधरा, फरसराम, श्यामलाल, घनश्याम, बाबू गौरी और हसन सिक्का भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन, उन्हें जिला उज्जैन एमपी से भीरूलाल वाकतरिया, भोला प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाक। रामशंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, सुनीता और सूरज यादव, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार, प्रमोद डूडी और ये हैं चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील, अमन, बुद्धनगर खंडवा से नदीम और राजू, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजित, आयुष और नंदनी।

इंस्टाग्राम सुखरी कला से अमित शकुनारुषि ओशिका आदित्य और अंजलि कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गांव गड़ी कुटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सिराजुद्दीन अंसारी नसीबन बेगम अक्रम इलियास मुशाहिद अक्सा आयशा और समीना अंसारी और जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश कगनेजा पूनम विशाल दिशानी और निमित गंज डिंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी जायरा बेगम मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान साथ ही कालानौर से नरेंद्र शर्मा किरण नितिन और मयंक धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद आलिया और अयान दही गांव नादुरा से ढोंडू भातुरकर मंगला विवेक भारती प्रतीक्षा कोमल समाधान और संत नगरी शेगांव से शुभम और रुद्र राउत कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश रेखा और अभय साधुशहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ बोरसरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार वैभव भीमा विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशी साहू सुनते हैं आज जो कि मॉनसून शुरू हो गया है उस पर आधारित बारिश पर आधारित ये गाना जो कि है फिल्म अफसाना प्यार का फिल्म से अमित कुमार की आवाज में।

0: आशा भोसले, अमित कुमार की आवाज, फिल्म का नाम अफसाना, प्यार का ये गाना आपने सुना आकाशवाणी बरेली पर।
1: की पढ़ाई हो या बड़ी बेटी की शादी, हर जरूरत के लिए है
2: SBI गोल्ड लोन।
1: अरे कोई ऐसा वैसा गोल्ड लोन नहीं, SBI गोल्ड लोन।
2: लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो हिडन चार्जेस, हैसल फ्री प्रोसेस, नो प्री पेमेंट पेनल्टी, क्विक डिसबर्समेंट। SBI गोल्ड लोन, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। आज ही अपनी नजदीकी SBI शाखा से संपर्क करें।
0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में

बहेड़ी से अंजुम खालदा बेगम और इनके परिवार के सभी सदस्य, बीमा वैभवी विनोद विभूति, प्रमोद कुमार, अंशु बबली, प्रियांशु बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से हैं, कमल स्वाने हाजी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कर रामगढ़ कैंट झारखंड से, निपिन स्वाने और नागपुर महाराष्ट्र से हमारे सभी श्रोता, ग्राम और पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारु नूर अंसारी, फरियाद शकील, मोइन तस्लीम और डीजे प्रधान। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी इमरान रिहान, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब ये हैं, लोहरडेडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन, सुधीर और भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, निसार अहमद अंसारी महजबी, निसार अंसारी, नुजहत फातिमा, अब्रार अहमद, इसरार अहमद, इकबाल अहमद, तस्लीम रजा, पप्पू भाई, नास रेडियो क्लब करेली से हैं, बीचना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका, यूनुस और सोफिया खान, कस्बा मीरगंज बिजली घर से हैं, आदर्श दिवाकर, लव ओमपुरी और कल्लू जो साथी, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, संतोष कुमार हमारे श्रोता साथी, नौलागढ़ नई बस्ती भोजपुरा बरेली से तराना अंसारी, तरन्नुम अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन और इनके परिवार के सभी सदस्य, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के रा। ग्राम आनंदपुर दुनका मीरगंज से हैं जितेंद्र सिंह राजपूत, प्रभा राजपूत इनके परिवार के सदस्य, नंगलफेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण मुनीश और राहुल, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप, मंसेरू रेडियो लिसनर्स क्लब से है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी, गाँव खाकरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और अज्ञाना कंचव भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाव खड़से, ललिता, आशा रानी खड़से, संजना कार्तिक, गणेश, लड्डू चौधरी, देविका, स्वाति, प्रज्ञा और इनके परिवार के सदस्य भी सुनना चाहते हैं इस गाने को, चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, साहिबा जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान और मंजू निम्मी, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता, मंगल बाजार कटिहार से रवि फरमान, बेगम शमा, रफी, शाजी नगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता भाकरे, बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु, मनकाना मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली यूपी से बेनी सिंह, सागर पन्नीलाल, आशीष, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, खनक, शकुन, ओमवती, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथम सिंह, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गुराया, जालंधर पंजाब से एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव ये हैं, लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता, रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु, साथी ये हैं मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, गांव हीरावाली फजिल का पंजाब से सुभाष गुदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु और इनके परिवार के सदस्य, और आप सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से जिसमें आवाज है मोहम्मद फैज की।

ये गाना आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से ऐश, और इसमें आवाज थी श्वासा तिरुपति की, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। आकाशवाणी बरेली से समय आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद, और बारी अगले गाने की। ग्रामर पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकलील अहमद, मोइन तस्लीम और डीजे प्रधान पलारी टीकमगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम दिवांगन और कृष्णा वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान ये हैं, लोडेडा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, सुधीर और भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, और ये हैं सुमन देवी, कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव ओमपुरी और कल्लू मिस्त्री भी इस कार्य को सुनना चाहते हैं। साथ ही खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अंकुश, चंदन और इनके परिवार के सभी सदस्य भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु ये हैं, पटेल नगर मलोर से रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू जजौरिया, गांव हीरावाली फाजिल।

का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती और हिमांशु भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये हैं शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल और इनके परिवार के सभी सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य। नाभा जिला पटियाला से पंजाब से सोमदत्त क्यारव, ज्योति रानी, गुरमन कौर, मनु भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी गार्ड की नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना, शैलेंद्र, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, नंद कुमार ठाकुर, प्रमुला, प्रियंका, चौदह बार नवापारा अभ्यारण्य, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से ग्राम रसूडिया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। ये हैं अलकनाथ मंदिर के सामने से गंगवार जो कि इस गाने को सुनना चाहते हैं। इनका पूरा परिवार बेचूलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत, ज्ञानेंद्र, इला देवी, बर्फा देवी, सुनील, संजय, अश्विनी, विनोद दीक्षित, राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद, इनका पूरा परिवार चकमंद्रा पीएस जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से सरजीत सिंह जौसन, सरजीत कौर जौसन, गुरमन ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से हैं, आदर्श पाल सिंह जौसन वैंकूवर कैनेडा से, रॉबिन सिंह गुजरात गांधी ग्राम से, प्रवीण सोनी जगदीश जौहरी विलेज काष्ठा ओल्ड अमरावती फ्रॉम महाराष्ट्र से, प्रवीण योगिता प्रियाली पार्थ और इनका पूरा परिवार। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा सोनाली, सोनम और आशीष भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। सलार पहलगाम कश्मीर से पैरजादा मिराज उद्दीन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है हमारे श्रोता जो कि परी महल कासगंज से आदाक अंसारी, नबील खान, अरफा खान, इल्मा खान भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता आरती, प्रसाद यादव, सोनल सिया जालना शहर से, सोमनाथ, ओम यादव, सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता यादव। और हिंगली महाराष्ट्र से हैं नंदा बोडके, हनुमान, उत्तम जमदाड़े, साथ ही उत्तम उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, पीपरपारा, पालचुआ, मुंगेली छत्तीसगढ़ से, सफीदो सिटी हरियाणा से नानक चंद, चंचल, लवली, रजत, लव, कुश और इनका पूरा परिवार, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा और लाडो मल्होत्रा, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल और पूजा परिहार। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है छलांग, जिसमें आवाज है स्वेताज बरार और हनी सिंह की।

और अब आप सुनेंगे ये गाना, फिल्म का नाम है बागी 2 से, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये हमारे श्रोता मदार चौक ग्राम उदयपुर बानोजान जिला बरेली उत्तर प्रदेश से नाजिम अली वसीम अकरम अली मुनाजिर मोहम्मद हुसैफ शबनम अदीबा फातिमा जेवा नूर और इनके परिवार के सभी सदस्य हैं, और सरताज खान दानिश वारिस खान ग्राम उडला जागीर बरेली से हैं। ये हैं नदगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेश ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा माया देवी राहुल विनीत और सोनम शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी रियाज मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। सप्ते रंग श्रोता परिवार कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका पुनावल पुणे से अजय सोनवने करिश्मा अविका और विशाखा अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना जावेद सुराज अख्तर जस्मीन शकीला हिना राजिया सुल्ताना अंसारी और परिवार की तरफ से इन्होंने नमस्कार भी लिखा है। और एमपी से हैं धनवंतरी नगर जबलपुर से अशोक सिंह सुनीता गुड़िया और वेदा कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य किरण दृष्टि मानवी शुगर फैक्ट्री गेवराई महाराष्ट्र से दिनकर सालवे अजय एकनाथ भाऊ साहब और परिवार के सदस्य ग्राम चांदुर बिस्माल जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से अशोक किशोर वानखेड़े उषा विशाल ग्राम राजूर तहसील मुताला महाराष्ट्र से राज गवई और राजवीर गवई छत्रपति संभाजी नगर सुरेवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बुरगांवकर सुषमा प्रांजलि सोहम सदानंद अंशुमन और ओवी उमरी नादेड़ महाराष्ट्र से हैं बाबू आप्पे घटबले और ज्योति। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से इस गाने को सुनना चाहते हैं। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू कुलवंती साहू देवेंद्र प्रताप नेहा मिलिंद प्रणय रुद्रांश इनके परिवार के सदस्य जुनवानी स्मृति नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से सूरत रमेश साहू तारा विद्या जितेंद्र किशन सुनीता नीलकंठ हिरेंद्र त्रिलोक और रंजीत साहू ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी मोहम्मद मुनाजिर अब्रैर हुसैन अफ्ताब मुन्ना भाई आशिक हुसैन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। स्मिता रेडियो फेसबुक लाइट ग्रुप से हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी हरविंदर सिंह चावला लोकेश आकाश पुरोहित वैदही अंशिका और अंकित कोल सिटी बरकाना से अफजल शाहीन सुल्ताना सोनू नसनीम मोहम्मद अफजल मलिक भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं बागी 2 से ये गाना जिसमें आवाज है आतिफ

आतिफ असलम की आवाज में आपने ये गाना सुना फिल्म बागी 2 से, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। मालवा रेडियो श्रोता संघ तहसील आलोड जिला रतलाम एमपी से कुमार कृपाल सिंह, पूजा परिहार, विक्रम, दिलीप, नरेंद्र और इनका पूरा परिवार, रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके परिवार के सदस्य, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से विनोद, ये हैं परमपाल सिंह, मनोहर राम सिंह, सुनील मुन्ना, अभय प्रताप, साथ में इनके दोस्त मुकेश श्रीवास्तव, कार्तिक, सुहेल अली जो कि बरेली से हैं, जनपद तहसील आंवला ग्राम पस्तौर से, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निमान, सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर जयतेक और मीका विरक, अजीत कसाना, माए देवी।

आदित्य लदावली मुरादाबाद से हैं, टाउन विशारदगंज जिला बरेली से सितेश साहू अविचल गौर और इनके परिवार के सभी सदस्य, अड़ार नाथ घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और हमारे सभी श्रोता इस गाने को सुनना चाहते हैं। गाना कौन सा है वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अडार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, राहुल चांदनी और गोपी वर्मा, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार और रिंकी, मजुका गंगापुर भोजीपुरा से हसमुख हसान, समस इनाया, शानूर फलकनूर, ताज और मोहम्मद अबानूर, ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास मास्टर सुनील बाबू, शिवम अभयमीत, भगवान देव, स्वाति तान्या और इनके परिवार के सदस्य, मगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य, गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल विकास, रोशनी और शकुन, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित हैप्पी, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार, प्रीति कार्तिक, शिव मंदिर हकीकतपुरा से मुन्ना भाई, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू, नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री अंजलि, बाला साहब राम निवास, धनंजय, पीबी कुलते, बीचवेर महाराष्ट्र से, जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति, मारहटा दरवाजा एटा से नवी हसन शहनाज, नवेद रसीम, अनम यश्यप और सुहेल भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघा शाहनवाज, फरदीन सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी, शाहू नगर यवतमाल से राहुल सरला, विशाल चेतन रोशनी और मजनूकर टिल्ला से कमल बालूजा, सागर सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, ये हैं मजनूकर टिल्ला से कमल, मधु, सागर सतना एमपी से माही के अलावा इनका पूरा परिवार भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि प्रहलाद और राजेंद्र, ये हैं कवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना, वीरगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश भावसार, राकेश अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल दीपिका, गाव्या सुच्चा सिंह, विनोदपुरी जयपाल और इनके परिवार के सदस्य, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी भारती बघेल, लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, सुरेश चौरसिया, सरोज सुबोध, संजू लल्ला, बाबू शिवा, शिवानी योगेंद्र नायक कासगंज से हैं और बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता पंकज वियार अबीर, नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज पिहू और दिया चौरसिया, ये हैं रश्मि झरना और भरत कुमार जो कि इस गाने को भी सुनना चाहते हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से रुपेश थंगई, प्रतेश प्रगेश और इनका पूरा परिवार, बीरचेर महाराष्ट्र से पोपट राव कुलते, हनुमंत प्रथमेश और इनके परिवार के सभी सदस्य, गांव नथाना पंजाब से हजिंदर छंदा, जसवीर सीता और गीता, संबलपुर काकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। और चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है टू स्टेट्स जिसमें आवाज है अजीत सिंह की।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद और 10:54 हो चुके हैं, तो जल्दी से आप सभी के नामों को भी शामिल करते हैं। ये हैं हमारे श्रोता संबलपुर काके से फगुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, प्रदीप सलूजा जो कि दिल्ली से हैं, इनका पूरा परिवार, और अभिजीत गवाड़कर, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन गवाड़कर और इनके परिवार के सदस्य मेहर नगर उमखेड़ महाराष्ट्र से हैं। हसीना बानो, दिलावर खान, अलीजा नायाब, रघुवीर नगर दिल्ली से। ये हैं दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर लखवीर, रानो, प्रवीण, शीतल, निशान और इनके परिवार के सभी सदस्य कुड़ी सेक्टर 5 सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमांश।

साथ ही नई बस्ती गंज डंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा तौसीफ, तैमूर हाशमी, कली मंसारी, एके राजपूत, अनिल कुमार, भगवान दास, मदन लाल राजपूत, रवि कुमार, नवनीत, किरण संतोषी, प्रिया और चंचल, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू तानिया और गणेशपुर गंज डंडवारा एटा यूपी से फारूक शेख, क्षमा परवीन, साइमा सरफराज, गुलफराज, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार, सावित्री मोहित, देविका गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जिवराम इस गाने को सुनना चाहते हैं। सेक्टर 18 जगादरी, यमुनानगर हरियाणा से।

दिनेशपुर गंजडवारा एटा यूपी से फारूक शेख शमा परवीन साइमा सरफराज गुलफराज नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार सावित्री मोहित देविका गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन जैन साहब संयम जैन मुस्कान जिवराम इस गाने को सुनना चाहते हैं सेक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से विनोद विनय मोहन खरवान मीनाक्षी प्लोमा डॉक्टर ईशानी गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसूर शाइना अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम और अदीम सिटी सेंटर खंडवा से मनोज भाई पूनम दीपक सौम्या भव्या कार्तिक ये हैं जयराम खुरवाल सचिन अमन दीपांशु होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली यूपी से तेज बहादुर यादव ममता रोनी और वानिका भी इस गाने को सुनना चाहते हैं मदरसा गेट भावपुरा मुड़ियाऊ जौनपुर से इशाद अहमद कामरान अरमान नवेद अजरा रायपुर अनी बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद नौरीन और आफिया भी इस गाने को सुनना चाहते हैं भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल से ब्रजेंद्र कुमार जयजान कांता गुंजन साहिल और वाणी है और ये है चकभाटा कैंप से डिया नरवानी रवि चांदनी खुशी रेलवे रोड गंजडवारा से मोहम्मद कलीम भुवन प्रकाश बेगम नाजमा सरिता गौतम और तो चलिए आप सभी की पसंद का ये गाना सुनते हैं जो कि है फिल्म द ट्रेन से लता मंगेशकर की आवाज में

अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद आकाशवाणी बरेली पर, और अब समय है सब रंग का। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं पवनदीप राजन।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है सब रंग।
1: आज वो आ रही है।

पर मैं नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम झुमका गिरारे में। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त नीतू। आज का दिन खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस माध्यम की जिसने दूरियों को कम किया और दुनिया को जोड़ दिया, सोशल मीडिया की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम एक खूबसूरत गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग आकाशवाणी बरेली पर, और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम झुमका गिरारे का। तो चलिए सुनते हैं झुमका गिरारे।

0: 맞춤가?
1: आकाशवाणी सुन रहे हैं आप और साथ ही सोशल मीडिया ने जहां हमारी जिम्मेदारी बढ़ाई है, हमें जोड़ने का काम किया है, वहीं इसके सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी भी हमारी है। एक अच्छी जानकारी, एक सकारात्मक संदेश और एक रचनात्मक सोच समाज में बदलाव ला सकती है। हमने कुछ युवाओं से जाना कि उनके लिए सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण है, तो चलिए आपको सुनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम उज्मा है।
1: जी उज्मा, जानना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से करती हैं। अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया ने दुनिया को छोटा कर दिया है, लेकिन सकारात्मक इस्तेमाल हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने आपकी सोच या जीवन शैली में काफ़ी बदलाव किया है?
2: हाँ, काफ़ी बदलाव किया है मैम।
1: जी, अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आप क्या देखना पसंद करती हैं?
2: जैसे कि मैं पंजाबी गाना
1: जी
2: और कॉमेडी वगैरह भी देखती हूँ।
1: जी, फ्री टाइम में इसका इस्तेमाल?
2: फ्री टाइम में हाँ, काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं जो माइंड सेटअप भी हो जाते हैं हमारे, सबको देख के।
1: तो इस तरीके से क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए?
2: क्योंकि सोशल मीडिया पर शेयर की गई चीज़ों का असर बहुत लोगों तक पहुंचता है,
1: तो इसका सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए।
2: हाँ जी, सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए।
1: जी, शुक्रिया।

0: जानते हैं कि बरेली के लोगों के लिए सोशल मीडिया का ये दिन कितना इम्पोर्टेंस रखता है। जो आपका नाम?
1: मेरा नाम राशिद है।
0: राशिद, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड फ़ोन के ज़रिए?
1: जी, मैं वीडियो कंटेंट बनाता हूँ अपना, स्टोरी लव वाला।
0: जी, ये तो अच्छी खबर है। आप इंस्टा पर अपनी स्टोरीज डालते हैं, तो किस टाइप की स्टोरीज होती हैं?
1: जी, मेरी स्टोरी होती है लव स्टोरी होती है मेरी स्टोरीज।
0: थीम को आपने रखा है, तो इसमें क्या दिखाते हैं आप?
1: इसमें ये दिखाता हूँ कि लड़की, मतलब लड़का बहुत ही ज़्यादा लड़की को प्यार करता है, फिर भी लड़की उसे छोड़ के चली जाती है। इस टाइप का मेरा कंटेंट रहता है।
0: हर बार अलग अलग होता है?
1: हाँ, अलग अलग होता है। किसी किसी मैं धोखा देता हूँ लड़कियों को।
0: जी, तो ये सारी चीज़ें आप ऑडियंस को दिखाते हैं?
1: जी जी।
0: तो क्या आपके काम को पसंद करते हैं लोग?
1: हाँ, पसंद करते हैं, काफ़ी वायरल भी जा रही हैं वीडियोस, कमेंट भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं लोगों के।
0: तो अच्छी खबर है। तो पॉजिटिव वीडियोस दिखाना आपका मुख्य मकसद है?
1: जी जी जी।
0: बिल्कुल, आपका शुक्रिया। जो आपका नाम?
2: प्रिंस।
0: जी प्रिंस, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं?
2: जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ मैं।
0: एक्टिव रहते हैं?
2: जी बिल्कुल।
0: क्या
2: सोशल मीडिया
0: करते हैं?
2: मैं मतलब खुद की आवाज़ में, वॉइस में, मतलब ये दिखाता हूँ कोई गलत हो रहा है कुछ तो मैं वो दिखाता हूँ, जैसे कोई गलत कर रहा है किसी साथ में वो दिखाता हूँ मैं।
0: अच्छा, समाज को जागरूक
2: करता हूँ। हाँ, सपोर्ट भी ठीक मिलता, अच्छा खासा मिलता।
0: अच्छा जी, किसी भी चीज़ के दो पहलू सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं, तो सोशल मीडिया के हमें फायदे भी हैं, नुकसान भी है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
2: यही है, अगर सही से इस्तेमाल करोगे तो अच्छा होगा, और गलत तरीके से करोगे तो गलत होगा। यही है।
0: बिल्कुल, शुक्रिया। तो सोशल मीडिया के दिन हम जानते हैं कि किस तरीके से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जी, आपका नाम?
3: शिवम नाम हमारा।
0: जी शिवम, सोशल मीडिया का आजकल ज़्यादा ही क्रेज़ है, तो आप किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं?
3: हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल न्यूज़ वगैरह देखने के लिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए,
0: बातचीत करने के लिए। और साथ ही अगर हम बात करें तो इसके एक तरफ तो फायदे हैं, दूसरी तरफ नुकसान भी है, तो फायदों के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं इसका?
3: जो ज़्यादातर हमारे न्यूज़ वगैरह आती हैं, वो अपडेट आते हैं, वो शेयर कर सकें, ताकि ज़्यादा जानकारी आती है शॉर्ट में, जो डिवोर्स के चल रहे हैं, ज़्यादा मैटर चल रहे हैं उस टाइप से, और भी सारे मैटर सुलझ सकते हैं इसमें।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।

समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। दोस्तों, आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह की खबरों से लेकर दोस्तों और परिवार से जुड़ने तक सोशल मीडिया ने संवाद का तरीका बदल दिया है। खासकर आज की जेन जी पीढ़ी सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। उनके लिए ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने, अपनी पहचान बनाने और नए अवसरों का मंच भी है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा खास अंक सोशल मीडिया दिवस पर। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। जुड़े रहिए आकाशवाणी बरेली के साथ और सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम झुमका गिरारे 100.4 FM पर। तो मैं आपकी अपनी दोस्त नीतू आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।

0: के 31 मिनट और ये जो म्यूजिक चल रही थी मैं ऐसे डांस करते करते ही आपको बता रही थी उसी मोड में। 11:31 आप तक भी ये डांसिंग एनर्जी पहुंच रही है क्या? वैसे हम ये कह रहे थे कि अक्सर जब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही होती हैं तो मन अपने आप खुश हो जाता है। हमारे बहुत सारे कॉलर्स निरंतर हमें कॉल करते रहते हैं और मेल्स भेजते रहते हैं। सबसे बात हो पाना एक लक की बात होती है। मुझे लगता है यूनिवर्स में कभी कभी ऐसे जब बात करना लिखा हो तो आपके और हमारे तार ऐसे ही जुड़ जाते हैं जैसे शायद अभी किसी का जुड़ गया होगा। देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो,
1: सलाम वालेकुम
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: जी दीदी, सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यारा प्यारा नमस्कार और प्यार भरा सलाम
0: जी,
1: प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: आपको
1: मेरा नाम मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
0: मोहम्मद फैज, ऐसा लग रहा है आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं। आपने इतने बढ़िया से एक एक शब्द को डिस्टिंक्ट कर करके बोला, बड़ा यूनिक सा अंदाज है आपका।
1: जी दीदी, क्योंकि जब एफएम पे ना पूरा इंडिया सुनता है तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए हर एक लफ्ज।
0: बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारी से। मुझे लगता है कि एफएम पे ही नहीं, जिंदगी में भी अपने करीबियों से भी बड़ा सोच समझ के ही बोलना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, क्या संदेश लाए ये बताइए।
1: जी दीदी, मेरा संदेश है उसमें कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूंगा।
0: बिल्कुल, पहले संदेश फिर नाम।
1: मेरा संदेश मैम ये है कि जैसे आजकल मैम जमाने में जैसे स्कूल में जैसे टीचर या सर होते हैं तो जैसे लड़के पढ़ जाते हैं उसके बाद में जैसे टीचर या मैम जी मिलते हैं रास्ते में या इधर उधर तो वो मुंह मतलब लड़के मुंह छुपा लेते हैं, तो ऐसा कृपया न करे, कम से आदर से लिहाज करे उनका, उस्ताद का मतलब आदर से लिहाज करे और हालचाल पूछे, मतलब मुंह न छुराए, मेरा ये संदेश रहेगा।
0: अच्छा, आपको क्यों लगता है क्यों करते हैं वो ऐसा?
1: जी पता है मैम, मैं तो जो भी हमारे जी जी हाँ, ये जैसे अब अचानक मिलेंगे मतलब जैसे तो सभी से अगर मुलाकात करें क्या करते हो क्या नहीं करते हो, हाल चाल पूछेंगे,
0: और अगर तो कुछ नहीं ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि हम बता सके तो शायद मुंह चुरा लेते हैं।
1: जी जी
0: कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अपने जो गुरु होते हैं वो हमें किसी भी हाल में जज नहीं करेंगे, वो हमें नहीं ऐसा फील कराएंगे कि अरे तुम कुछ नहीं कर रहे या तुम्हें इतना नहीं किया उतना नहीं किया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मुंह ना चुराए, मिले।
1: जी जी जी बिल्कुल। और हेलो दीदी।
0: हाँ
1: दीदी, हमारे गाँव का दीदी मौसम बड़ा खुशनुमा है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही।
0: अब भाई आप सबने ना एकदम बारिश वाला माहौल बना दिया है, मैं समझ गई, मेरा चाय पकौड़े का मन कर गया। बट
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए, हाँ जी,
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कभी भी हमारे गांव आइएगा, टहल जाइए और कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल।
1: जैसे जमील गुंटी वाले और मोहम्मद पेड़ा भाई और मोहम्मद सद्दाम भाई है, आसिफ भाई है, रेंगे पिंकी है, जावेद अख्तर भाई है, गुलाब साहब है, समा परवीन अप्पा है, साहिबा है, सादिया है, यासिर अमीद है, बाबू अंसारी, वकील अहमद है, तरन्नुम अंसारी है, और एक सूरतगंज के हैं, सूरतगंज के एक भाई है और आलम अंडे वाले हैं। बस
0: ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: और दीदी मैं ये कहना चाहूँ दीदी, जल्दी से जल्द हमारे गाँव आ जाएगा, टहल जाइएगा।
0: जरूर जरूर जरूर,
1: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग। भाई 11:35 हो रहे हैं, प्यारे प्यारे संदेश आ रहे हैं, प्यारे प्यारे हम गाने सुन रहे हैं और बस हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपके एरिया में भी बारिश हो रही है जैसे कि हमें

सारे कॉलर्स बता रहे हैं। तो बस अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यही वो मौसम है जहां हल्की सी भी असावधानी आपको दे देगी जुकाम बुखार जैसे, और दो चार दिन आपके ऐसे ही बीत जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आप परेशान रहेंगे, हम वो नहीं चाहते। फिलहाल ब्यूटीफुल सा ट्रैक एंजॉय करिए आप।

11:38 और संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ कहां 100.7 FM पर और कहां और देखते हैं कि भाई अगला मेल हम किसका ले रहे हैं। आलोक साहू जी क्या कह रहे हैं, कह रहे रायबरेली ऊंचा हार धमधमा से हूँ और पूछ रहे हम कैसे, हम तो बहुत अच्छे हैं, आपका मेल मिला और आप सबसे बात हो रही और भी अच्छे। संदेश है कि अपने बोल से किसी के दिल को चोट ना पहुंचाए, जो बोले ठीक बोले। और एक ही प्रश्न है कि पूछ रहे हैं कि जब सॉन्ग्स बजते हैं तो आप स्टूडियो में क्या करते हैं। भाई हम आपकी तरह एंजॉय करते हैं और हम बस इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे आपको कंटिन्यूअसली एंजॉय कराते रहें। चलिए फिलहाल नजीम रायन जी का मेल ले रही हूँ। कह रहे दिल्ली इंदर लोक से सुन रहा हूँ, सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो और अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कब रखो। अच्छी बात कही है और बड़े राइमिंग सी गहरी बात कह दी आपने फिलहाल। और अगला मेल हम ले रहे हैं गीता सेठ का। कह रही है जल संरक्षण के दूरगामी लाभ है और अगर हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफी राहत हो जाएगी। इससे एक लाभ ये भी होगा कि जल की कमी होने पर बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही ऐसे लोगों को भी जल प्राप्त हो सकेगा जो जल संकट का सामना कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ अगला मेल ले लेती हूँ मैं नजीम उस्मानी।

जी का कह रहे हैं प्रोग्राम अच्छा है और बहुत ऐप के जरिए प्रोग्राम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और नजीम उस्मानी महमूदाबाद सीतापुर से उन्होंने हमें ये बात बताई है, भाई आप भी न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए कहीं भी बैठकर मजा ले सकते हैं 100.7 एफएम रेनबो का। तो हमें इंतजार रहेगा, अगर आप सुनते रहते हैं तो हमें बताते रहिए, इसी तरह आपको प्यार पहुंचता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है, लगता है स्टूडियो में हम अकेले नहीं हैं, आप भी हमारे साथ ही हैं। फिलहाल 11:41 हो गए और आयुषी के साथ सुन रहे हैं आप संदेश आपके गीत, हमारे एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपके लिए, क्यूट है क्यों देर करे, सुन लेते हैं फटाफट।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा। सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: ग्यारह बज के 46 मिनट और आपके साथ आपकी दोस्त है आयुषी। संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हम 100.7 FM पर। और देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मतलब मेल्स के थ्रू भी और फोन के थ्रू भी। अब हम मान लेते हैं कि भाई जो लोग कोशिशें कर रहे हैं और लिख रहे हैं उनके लिए भी, और जिनका फोन मिल रहा है उनके लिए भी, और नहीं मिल रहा है तो भी मायूस नहीं होइए। देखिए हमारे तार कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। फिलहाल देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो,
6: नमस्कार
5: जी, किससे बात हो रही है?
6: आकाश मानी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल, गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल, नाम है मेरा राजेंद्र, गांव है पोस्ट गुतनी, तहसील कुंडा, जिला है प्रतापगढ़।
5: ओके, तो आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, अगर थोड़ा सा और आप तेज बोले तो बड़ा हमें शायद आसानी से सुनाई पड़ेगा।
6: आवाज क्लियर मिल रही है?
5: अब आ गई। हाँ जी, क्या नाम बताया आपने?
6: राजेंद्र।
5: राजेंद्र, तो राजेंद्र क्या आप लाए हैं बढ़िया सा हमारे लिए मैसेज?
6: तो मैम बताना चाहेंगे कि इस जो मौसम चल रहा है बहुत, मतलब कि धूप और गर्मी का है, और इस मौसम में जैसे कि निकले अगर तो छाता लेके निकले और नारियल पानी भी पिए। अगर नारियल पानी नहीं पी पा रहा है नींबू पानी का प्रयोग जरूर करें, और घर से निकलते समय पानी पीकर ही निकलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम सब ऐसा करेंगे तो इसका प्रभाव और लोगों को भी पड़ेगा।
5: ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है। क्या आप ये सब फॉलो करते हैं?
6: जी,
5: चलिए ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई। तो देखिए 11:48 हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, और भाई आज भी मैंने अगर वो लाइन नहीं कही तो अधूरी सी रह जाएगी। मेरा मन करता है मैं किताब छाप दूं भाई, उनमें सारे सारे प्यारे प्यारे जो मोती है, मैसेजेस के मोती, यानी आपके संदेशों के मोती, उसको पिरो दूं, और सोचिए क्या बढ़िया नायाब किताब होगी वो, हमारे लिए सुरक्षा कवच सी हो जाएगी वो, हमें हर चीज से बचाएगी वो, है ना। फिलहाल आपके लिए भाई मैंने बहुत ही प्यारा सा एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक क्यों किया है, तो हम एंजॉय करते हैं उसको भी, संदेश भी लेंगे इसके बाद भी।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बज के 52 मिनट हो रहे हैं, आयुष के साथ सुन रहे हैं आप संदेश, आपके गीत हमारे और प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे संदेश बिखरे पड़े हैं हमारे मेल बॉक्स पे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी का भी संदेश ऐसे छूट जाए। आप बड़ी मेहनत से लिखते हैं, हमें पता है। देखिए मोहम्मद सद्दाम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्यूट सी प्यारी वाली आरजे आयुषी, आपको प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा सलाम। और मोहम्मद सद्दाम रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से ईमेल कर रहे हैं, और सुपरहिट गाने बहुत अच्छे लगे, ठीक है। और संदेश ये है कि सभी लोग अपना मौसम में ख्याल रखें, और नाम ले लिया है मोहम्मद फैज का, चलिए आप भी ख्याल रखिए। और अगला बेल है मुनीश कुमार राज भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से, और संदेश है कि नौजवान और महिलाएं मोबाइल पर बात करने में इतनी व्यस्त हो जाते हैं कि अगर उन्हें कोई नमस्कार करे, हालचाल पूछे तो ध्यान नहीं देते। वैसे मुझे लगता है कि ये जेंडर बायस नहीं है, ये किसी पे भी लागू हो सकता है, पर हाँ ये बुरी आदत है। और दूसरी समस्या ये है कि रील देखने और बात करने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अगर बाहर हो और साथ में छोटा बच्चा हो तो बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाते उतना। और खुद इन्होंने कई बार एक बच्चे को बचाया है जो रोड की तरफ जा रहा था। इन्होंने लिखा है मोबाइल जरूरी है, पर अपनों की सुरक्षा और ध्यान देना उससे भी जरूरी है। हम आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। और इसके साथ अगला मेल जो आया है वो है हरिकृष्ण उर्फ, अच्छा देखते हैं क्या लिखा है, अमित नाम लिखा है शायद। आजकल ट्रेंड चल रहा है स्वयं के ये पूर्वज के उपनाम की जगह दूसरों के पूर्वज के उपनाम का प्रयोग करते हैं लोग, और ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से बच सकते हैं। और इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि अपनी ही गौरव गाथा से मुंह मोड़ना क्या बात हुई, गैरों के उपनाम लगाकर ये कैसी शुरुआत हुई। चलिए बहुत अच्छा लगा आपने मेल किया, थैंक यू सो मच। और भैया मोनू सेठ ने भी हमें मेल किया, और आज डिजिटल साक्षरता के ऊपर बता रहे हैं कि किस तरह इंटरनेट और स्मार्टफोन शारीरिक रूप से बाहरी दुनिया से काटकर अकेलेपन की ओर धकेल रहा है, तो आप इससे बचें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने प्यारे प्यारे मेल्स हमारे लिए लेकर आते हैं, और तभी हम इन मेल्स के जरिए आप तक पहुंच पाते हैं, और आप तक आपकी जितनी भी बातें हैं, जितने भी मैसेजेस है, संदेश है, वो दुनिया तक पहुंचा पाते हैं। तो थैंक यू सो मच। और फिलहाल आयुषी का संदेश आपके गीत हमारे से वक्त आ गया है विदा लेने का, और भाई एक सरप्राइजिंग सी वॉइस आपसे कुछ ही देर में जुड़ेगी। वो अपना दमकता खिलखिलाता सा प्यारा सा चेहरा और प्यारी सी आवाज लेकर स्टूडियो में दाखिल हो चुकी है, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं करूंगी कि आप किससे मिलने वाले हैं। फिलहाल बहुत प्यारा सा एक गाना मैं आपके लिए यहाँ पर क्यू करके आपसे ले रही हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बारिश एंजॉय करिए अगर हो रही है तो, नहीं हो रही है तो भी एंजॉय करिए, गाने एंजॉय करिए, 100.7 FM सुनते रहिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया गया जो भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करेगा। यह समूह इस क्षेत्र को मजबूत करने के तरीके सुझाएगा और भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उपाय सुझाएगा। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र के मॉडल स्कूल ग्राउंड में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकमाता की प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अनावरण स्थल के निकट एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर केंद्रीय जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष निहाल सिंह बघेल ने बताया कि कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। लखनऊ मौसम केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए आज तेज आंधी तूफान आकाशीय बिजली और वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश के मध्य और तराई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं व आंधी चलने, आकाशीय बिजली चमकने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके चलते लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, लखीमपुर खीरी समेत अन्य जिलों और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई गई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को के नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इससे पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए रोमांचक मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मुकाबले में पैराग्वे ने अतिरिक्त समय में 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को 4-3 से हराकर विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने और देश भर में सिनेमाघरों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की

जी 12:04 का वक्त और प्रोग्राम वही जो आपको देता है ऐसे टिप्स जिनको अपनाकर और अपने जीवन में उतार कर आप बन जाती हैं सुपर एक्सपर्ट। जी हाँ, शुरू हो चुका है प्रोग्राम शत्रुपा, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ और बातें करेगी आपसे ढेर सारी। और बातें होंगी ऐसी जो आपको बनाएंगी स्टाइलिश। जी हाँ, क्योंकि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को हम बात करते हैं फैशन की। तो हम बातें शुरू करें उससे पहले एक गाना एंजॉय कर लें।

जी 12:11 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शत्रुपा। और दोस्तों दिन तो चढ़ गया है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि दिन ना चढ़े, क्योंकि आजकल का ये जो गर्मी का प्रकोप है वो हम सब झेल रहे हैं। लेकिन आज जो मौसम है वो थोड़ा खुशनुमा हो गया है और हम लोग का जो दिल है वो भी गार्डन गार्डन हो गया है। तो इस प्यारे से गीत के बाद मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम शत्रुपा में। दोस्तों हम महिलाओं की एक जो विश होती है वो हमेशा मन में रहती है, और वो विश है कि हम सुंदर लगे, स्टाइलिश दिखें और हर कोई हमारी तारीफ करे, चाहे ओकेजन कोई हो, चाहे वेदर कोई हो। जैसे आजकल जो सीजन चल रहा है ना, उससे हम सब वाकिफ हैं। सूरज आग बरसा रहा है और गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस पसीने वाली गर्मी में भी हमारा फैशन तो ऑन पॉइंट ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए ना? जी तो बिल्कुल रहेगा आपका फैशन ऑन पॉइंट। क्योंकि जब प्रोग्राम शत्रुपा हो और ऐसी चीजें ना आपको बताई जाएं जिससे आपका फैशन ऑन पॉइंट रहे, तो फिर भाई बेकार है सारी चीजें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेयर कट और हेयर स्टाइल्स के बारे में जिनको अपना कर आप इस सीजन भी दिखेंगे स्टनिंग, स्मार्ट और समर रेडी। तो वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे हेयर स्टाइल हैं, हेयर कट हैं जो आपको दिखाएंगे स्टाइलिश। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक बिल्कुल रेडी है आप तक आने के लिए, तो हम वो ट्रैक आप तक पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो
4: फिर मानो।

हेयर कट में से कोई भी अपने फेस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं जो आपको देगा स्टाइलिश लुक। और दोस्तों जब आप इस तरीके का कट करवाएंगे ना, हेयर कट करवाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपसे लोग क्या कहेंगे। वो ये गाना कह रहा है, तो चलिए सुनते हैं। देखिए ये गाना जो आप सुनेंगे ना, वही लोग आपसे कहेंगे।

जी 12:27 और वही दोस्त आपके बात करते हैं फैशन की। और फैशन की जब बात हो और हेयर स्टाइल और हेयर कट माइंड में ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। हेयर स्टाइल करेंगी, बहुत अच्छे अच्छे हेयर कट करवा लेंगी जो आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वो आपसे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई तुम सा नहीं, बिल्कुल सब आपसे यही कहेंगे कि कोई तुम सा नहीं। जब हम सज धज के तैयार होते हैं और स्टाइल बना लेते हैं, हेयर कट करवा लेते हैं, तो भाई हम तो लगते हैं यूनिक। तो आज जो यूनिक हम लगने वाले हैं वो यूनिक लगेंगे कुछ

जी 12:27 और वही दोस्त आपके बात करते हैं फैशन की। और फैशन की जब बात हो और हेयर स्टाइल और हेयर कट माइंड में ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। हेयर स्टाइल करेंगी, बहुत अच्छे अच्छे हेयर कट करवा लेंगी जो आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वो आपसे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई तुम सा नहीं, बिल्कुल सब आपसे यही कहेंगे कि कोई तुम सा नहीं। जब हम सज धज के तैयार होते हैं और स्टाइल बना लेते हैं, हेयर कट करवा लेते हैं, तो भाई हम तो लगते हैं यूनिक। तो आज जो यूनिक हम लगने वाले हैं वो यूनिक लगेंगे कुछ ऐसे हेयर कट और हेयर स्टाइल्स को अपना कर, क्योंकि ये सीजन ऐसा चल रहा है कि हम बड़ा कंफ्यूज हैं। लेयर्ड कट की ऑप्शन को चुन लें। तो अगर आप इस समर हल्का करना चाहती हैं, फैशन आपका ऑन पॉइंट रहे, ऐसा आप चाहती हैं, तो आपको ये जो लेयर्ड कट की बात हम कर रहे हैं वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि ये कट जो है ना वो आपके बालों को वॉल्यूम देता है, उनका भारीपन कम करता है और लेयर्स जो होती है ना चेहरे को फ्रेम करती हैं। और चेहरे को जब फ्रेम करती हैं, जो लेयर्स आपके चेहरे पे आती हैं, तो उसका जो अट्रैक्शन है, आपके जो फेस का अट्रैक्शन है, वो कुछ अलग ही दिखता है। तो दोस्तों, अगर आपके बाल लंबे हैं और आप बहुत छोटे कट नहीं करवाना चाहती, हेयर कट नहीं करवाना चाहती, तो बिल्कुल आप जाइए और ये कट करवाइए। और देखिए, आप कहेंगी वाह, क्या आज का जो प्रोग्राम था उसको मैंने सुना और मुझे कितनी अच्छी इंस्पिरेशन मिली और मैं कितना एलिगेंट दिख रही हूँ। तो ये कट आप करवाइए और साथ ही, अच्छा, इस कटवाने के लिए सोचिए और साथ ही ये ट्रैक भी एंजॉय करिए।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL Gold, TMT सरिया,

आपको बताइए, और अभी तक आपने इनको नहीं ट्राई करा है तो अब बारी है ट्राई करने की। तो इसके बारे में आप सोचिए और प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करते जाइए, और अभी लौट कर आते हैं और खूब ढेर सारी बातें करेंगे। 10 मिनट हमारे पास बचे हैं, लेकिन बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

स्वादिश्मलोर 4 मेगा हर्ट्स पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और समय है आपके अपने कार्यक्रम अनुरोध गीत का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

कार्यक्रम का जो पहला गाना है वो है फिल्म डर से, हरिहरन लता मंगेशकर की आवाज, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णव कॉलोनी, सनावत एमपी से। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से ही हैं, दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित हैप्पी, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम डर, लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज में।

और उस गाने से पहले आपको बता दें कि ये गाना आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, अस्तुपुरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। ये है करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान, संधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, महाराष्ट्र हिंगोली से शाजी बोटके, नंदा बोटके, हनुमान बोटके, उत्तम जमदाड़े और रवराज जमदाड़े भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। फूलबाग किला छावनी बरेली से शोभे श्रीवास्तव, संजीव, राजीव राज, नितिन रानी, सोमवती, रोहन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदर और अंकुश। तो चलिए सुनते हैं सोनू निगम सुनिधि चौहान की आवाज का ये गाना, फिल्म का नाम दादी की शादी।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर और प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। और अब आप सुनेंगे गाना, उस फिल्म का नाम है क्या यही प्यार है, जिसमें आवाज अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की है। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान।

समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये गाना आपने सुना ड्राइव फिल्म से। और अब बारी है अगले गाने की। और ये गाना हम आपको सुना रहे हैं जिसमें आवाज है सनम पुरी और शिप्रा गोयल की। फिल्म का नाम हंसे तो फंसे, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनुष्का और तन्मय। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलफ अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस टी अंसारी, मेहताब आफ्ताब और मिराज। पीर बोहड़ा बरेली से आजाद खान, दलशाद मुस्तकीम और तबस्सुम। रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी वंदना, मनोरमा देवी, अजय फजरुद्दीन, अशोक खान, पानी की टंकी के पास, होली चौक, बरेली, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए आप सभी की पसंद का ये गाना सुनते हैं जिसमें आवाज है सनम पुरी और शिप्रा गोयल की।

और इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत और अब बारी अगले गाने की, जो कि है फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। Say whoa! इसमें आवाज है हार्डी संधू और किरण बाजवा की। लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि ये गाना हमारे सभी श्रोता कहाँ से सुनना चाहते हैं। बदायूं के ग्राम दूनीनगर से मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सतेंद्र गुड्डू, विशाल संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, दिव्या, सरिता और अंतिमा। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, संदीप, सुनीता, जगमोहन, प्रजापति। बरेली जंक्शन से सोनू मिश्रा, वीरेश सिंह चौहान, राजू और अंकित। लक्ष्मणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ, पंकज, तिरुपति।

0: आरू, साहू और धनक्ष। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। कस्बा शीशगढ़, बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा नईम इदरीसी और नदीप इदरीसी। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है, हार्डी संधू और किरण बाजवा की आवाज में।
1: Say whoa!

खसपाऊ गहती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता और डी के हिटलर के अलावा इनके परिवार के सभी सदस्य। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कुमार, सोनील, अमन और बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई, राजू, साथ ही बेनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार से हैं हमारे श्रोता अरविंद, गुड़िया, भाव्या, निवेश और नियति। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत, अमनदीप, अनिल शर्मा, शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। साथ ही ये हैं गंज डुंडवाला से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है किक, जिसमें आवाज है मोहम्मद इरफान की।

और अब बारी है अगले गाने की, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। चमनपुरा उदयपुर से नजीम खान, साहिबा खानम, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान और मंजू निम्मी। मंगल बाजार कटियार से हैं रफी रहमान और बेगम शमा रफी। शाजीनगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता। हुकुम करमकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमकर बेड़ी एमपी से ये गाना सुनना चाहते हैं, और ये है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, उमवती, खनक, शकुन, सारांश, अदिति, आयांश, शिवांश और प्रथव सिंह, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आराव और इनके परिवार के सभी सदस्य। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। वही शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अली, मजीम, अदीम, अब्दुल गनी ने भी इस गाने को सुनना चाहा है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कलंक फिल्म से ये गाना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में।

और साथ ही इस गाने को मोहल्ला मोलकपुर जुगन की गली मस्जिद शेरखां बरेली से सुनना चाहते हैं बेबी बाजी अनम मिरम हानिया प्रवीण तमन्ना तैबा नूर गुलफ शाह हसन आलम और राशिद।

यस बॉस फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं जिसमें आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। ये हैं बिश्ना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यूनुस, मनीष अंशिकाय और सोफिया, जिला मुरादाबाद, ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1, जिला बदायूं से धरवीर कश्यप पूषा, ध्यानपाल कश्यप, अनमोल अंश, करिश्मा और मुस्कान, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसू, तासु अर्णव और सत्यमानंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, तन्वी, मानवी, लक्ष्य, ऋतिक, मोहिनी, बलवीर सिंह। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है फिल्म यस बॉस से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत 104 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बरेली पर, और अब दोपहर के 2 बजे हैं। चलिए सुनते हैं रस रंग। सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं। देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी कर देती है।

0: करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया। हाँ। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
1: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
0: नाम नहीं लेती
1: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
0: सुनते हैं गीत।

0: आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
1: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
1: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
1: जी,
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार।

0: सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई, खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: काव काव काव, सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काव काव काव।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन?
5: कू कू।
6: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।
5: कू कू।
7: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
5: क्या
7: क्या
5: क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
5: नीचा
3: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: दम लगा के कू।
7: हईशा।
5: दम लगा के कू।
7: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं, ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं, काम काम काम। पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
7: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
7: ताल खोदने में इस जंगल में, खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: का का का।
8: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पानी पपीहा ना पिए दूजा पानी, हाँ हाँ पपीहा ना पिए दूजा पानी, पपीहा ना पिए दूजा
1: पानी। इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: बहु बहु बहु, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही
4: यही
2: सजा हो,
4: यही दंड हो।
5: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: काँ, काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
6: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
7: भाई? मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
7: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
6: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
6: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
7: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी, चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा।

0: कृष्ण पानी
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।
3: पानी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। आज का ये जो प्रोग्राम है ये हम करेंगे आपके केवल कमेंटों पर आधारित, क्योंकि आज जो टेलीफोन लाइन है वो कुछ उसमें समस्या है और उसकी वजह से आज हम आपके फोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए आज का ये जो प्रोग्राम है आधारित रहेगा आपके कमेंट पर। आपको करना इतना है, आपको जाना है आकाशवाणी बरेली के फेसबुक पेज पर और आपको आज के हमारे इस प्रोग्राम यानी कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ से संबंधित एक पोस्ट नजर आएगी और उस पोस्ट पर करना है आपको कमेंट। दोस्तों मौसम जो है वो खुशनुमा हो चुका है, आसमान में जो है बादल अटखेलियां करने लगे हैं और बादलों से जो झड़ती हुई बूंदें हैं वो धरती पर गिर रही हैं और धरती से एक सौंधी सी खुशबू जो है वो वातावरण में घुल रही है, यानी कि मानसून ने दस्तक दे दी है। और मानसून का जो ये मौसम होता है इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। एक तो इस समय हमारे जो किसान भाई हैं वो धान की रोपाई करने को तैयार बैठे होते हैं, तो उन्हें भी आवश्यकता होती है पानी की और खेतों को भी पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारी जो धरा है उसको पानी की आवश्यकता होती है। और मानसून ने दस्तक दे दी है और बूंदें झरना शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे अच्छी बरसात होगी, यही हम सब चाहते हैं। तो प्रोग्राम में यही विषय है आज का कि मानसून में आप क्या तैयारी करते हैं मानसून में बचाव के लिए। तो इसी विषय पर हम आपके कमेंट शामिल करेंगे कि मानसून में घर से बाहर निकलते समय क्या तैयारी रखें। तो देखते हैं क्या क्या कमेंट हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास कमेंट आया है गंगा सिंह रावत का, ये लिखते हैं कि मानसून की वर्षा रुक रुक कर या मूसलाधार चलती है, इसमें हमेशा छाता लेकर निकलें और दोपहिया वाहन में रेनकोट पहनकर निकलें। सड़क पर वाहन चलाते समय स्पीड कम रखें और पानी से भरे गड्ढों में संभल कर चलें। बिजली के झूलते तारों और बिजली के पोल से दूर रहें क्योंकि इनसे करंट का भी खतरा रहता है। गीले कपड़े तुरंत बदल कर शरीर को सुखाएं और घर में जो जहरीले जीव इन दिनों में बढ़ जाते हैं तो उनसे थोड़ा सतर्क रहें और सचेत रहें। तो ये था हमारे श्रोता गंगा सिंह रावत का कमेंट और ये रामपुर रोड हल्द्वानी से हमें कमेंट कर रहे हैं। तो मौसम भी खुशनुमा है और मुझे लगता है कि यहाँ से लेके हल्द्वानी तक क्या नैनीताल तक मौसम जो है शानदार है और मौसम जो है बड़ा खुशनुमा हो गया है और लोग ऐसे में चाय का भी आनंद ले रहे होंगे और चाय के साथ साथ आनंद ले रहे होंगे हमारे आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रमों का। तो

हल्द्वानी से हमें कमेंट कर रहे हैं, तो मौसम भी खुशनुमा है और मुझे लगता है कि यहाँ से लेके हल्द्वानी तक, क्या नैनीताल तक, मौसम जो है शानदार है और मौसम जो है बड़ा खुशनुमा हो गया है और लोग ऐसे में चाय का भी आनंद ले रहे होंगे और चाय के साथ साथ आनंद ले रहे होंगे हमारे आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रमों का। तो कार्यक्रम

जी हाँ, नील गगन पर उड़ते अब बादल आ आ आ, और धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। जब बादल नहीं आते हैं और मानसून का मौसम होता है और हमें बरसात की ज़रूरत होती है, तो कुछ हम इस तरह ही बादलों को याद करते हैं और बादलों को बुलाते हैं। और क्योंकि धरती जो है सूख चुकी होती है, तो मौसम जो है कुछ ऐसा ही होता है। तो और अगला कमेंट हम लेते हैं प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता दें कि आप प्रोग्राम में आज हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। आपको जाना है आकाशवाणी बरेली के फेसबुक पेज पर, और उस फेसबुक पेज पर आपको आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, इससे संबंधित एक पोस्ट नजर आएगी, और उस पोस्ट पर जाकर आपको करना है कमेंट, और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपका वो कमेंट, आपके वो विचार शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो ये कमेंट हमारे पास आ चुका है राम कुमार रेवाड़ का, सादुल शहर राजस्थान से, और ये लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार। हम तो हमेशा तैयार ही रहते हैं कि खास और इस खास तौर से इस भयंकर गर्मी और उमस से बेहाल मौसम में हम मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर बारिश आती है तो तैयारी क्या करनी है, हम तो तैयार हैं नहाने के लिए। मानसून की बारिश में तो हमें रेनकोट की आवश्यकता नहीं है, न छाता की आवश्यकता है, बस इंतजार है तो बारिश का और नहाने के लिए बिल्कुल।

बिल्कुल, हम तैयार और रेडी रहते हैं बारिश के मौसम का आनंद लेने के लिए, और हमें गर्मी से निजात मिल जाती है। निश्चित ही जो राजस्थान का मौसम है, आपने बताया कि गर्म होता है, तो इस गर्म मौसम में उम्मीद भी होती है बरसात से, कि बरसात जो है अच्छे से हो और मौसम जो है वो ठंडा हो जाए और गर्मी से हमें थोड़ी राहत मिल जाए। तो हम भी बादलों से कहते हैं कि बरस जाओ, जल्दी से बरस जाओ।

जी हाँ, बरस जाए बादल, बरस जा, हम भी बादल से यही कामना करते हैं। और मैं अभी स्टूडियो से बाहर गया था, निकल कर तो जो है बादल आसमान में हैं और अटखेलियाँ कर रहे हैं और कुछ बूंदें भी धरती तक आ रही हैं बादलों से, लेकिन हाँ इतनी तेज नहीं है। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे से बरसात हो और हमारे किसानों से लेकर सबको फायदा हो और मौसम का आनंद जो है वो सब लोग ले पाएं। और कमेंटों की ओर चलते हैं। ये कमेंट हमारे पास आ गया है नंद कुमार ठाकुर का, इनके साथ हैं प्रमिला ठाकुर और प्रियंका ठाकुर, ये चरौदा बारा नावापारा अभयारण्य से, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हमें कमेंट भेजते हैं। तो ये लिखते हैं कि जो मानसून का मौसम है इसमें तैयारी की अगर बात करें तो छाता और रेनकोट जरूर रखें, वाटरप्रूफ बैग रखें, क्योंकि उसमें हमें फ़ोन, पर्स और महत्वपूर्ण चीज़ें कभी कभी रखनी पड़ सकती हैं। तो फिसलन से बचने के लिए ग्रिप वाले जूते पहने, बिजली कड़कने पर पेड़ और खम्भों से दूर रहें, नाले गड्ढों वाली सड़क से बचें, एक्स्ट्रा कपड़े, टॉर्च और पावर बैंक साथ में रखें और निकलने से पहले मौसम का अपडेट ले लें। अपडेट रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद को जब हम अपडेट रखते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें पता लगती रहती हैं, चाहे वो समाज की हो, चाहे मौसम की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। और बात बरसात की चल रही है तो बरसात में अभी आपने गाना सुना कि बरस जाए बादल बरस जा, और जब बादल बरसते हैं तो उनका आनंद ही कुछ अलग होता है और लोग कुछ नहाने लगते हैं बारिश में और कुछ उसमें बाहर घूमना पसंद करते हैं। तो बारिश में जो भीगने का है वो भी अपना अलग आनंद है, लेकिन भीगेगा ज़रा एक सीमा पर भीगेगा, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, नहीं तो वो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। तो सुनते रहिए 100.4 FM पर कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

तो आप हैं 100.4 FM यानी कि आकाशवाणी बरेली के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और बात हो रही है मानसून में निकलने से पहले तैयारी की। तो अगर आप भी प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो कमेंट कीजिए। आपको जाना है आकाशवाणी बरेली के फेसबुक पेज पर, और उस फेसबुक पेज पर जाकर आपको कमेंट करना है। आज आपको पोस्ट नजर आएगी इसी प्रोग्राम से संबंधित, और उस पर जाकर आपको कमेंट करना है, और हम आपके कमेंट प्रोग्राम में लगातार शामिल कर रहे हैं। हमारे पास अगला कमेंट आ गया है तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम अरहम बाबू और किशवा और नूर का। ये लिखते हैं, मानसून में घर से निकलते समय अपने साथ एक मजबूत छाता या रेनकोट रखें, फोन और जरूरी दस्तावेजों को वाटरप्रूफ पाउच या प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखें, और फिसलन से बचने के लिए वाटरप्रूफ ग्रिप वाले जूते पहनें। घर की सुरक्षा के लिए खिड़की दरवाजे कसकर बंद करें और मौसम का आनंद लें। तो मौसम के आनंद लेने के साथ साथ हम भी आपको लगातार जोड़े हुए हैं गीत और संगीत से, और जब बारिश होती है और बारिश की टिप

भेजने वाले हैं बीएल धाकड़, भैरूलाल वाकतरिया धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं कि मानसून के समय मौसम में बाहर निकलते समय कुछ बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अपने पर्स, मोबाइल को पानी बचाने हेतु प्लास्टिक का कवर साथ रखें, जरूरी कागजात, कपड़े वाटरप्रूफ बैग में रखें। स्कूली बच्चों को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोपहिया वाहन चालक रेनकोट और छाता जो है वो अवश्य साथ रखें। तो इन्होंने सुझाव अच्छा लिखा है। और बरसात के मौसम में कभी कभी बच्चे जो हैं वो नहीं मानते और ज़्यादा भीग जाते हैं, तो ऐसे में भी खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो है खेल खेल में बरसात का आनंद तो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ऐसा आनंद जो है कभी कभी उनको स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और मौसम का आनंद लें, बरसात का आनंद लें और नीले गगन पर उड़ते बादलों का आनंद लें, और मौसम का तो कहना ही क्या।

नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। जी हाँ, नील गगन के तले ही धरती का प्यार पलता है, और धरती का प्यार हम पर्यावरण को भी कह सकते हैं, पेड़ पौधों को भी कह सकते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं वो वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, भूमि के कटाव को बचाने में भी सहायक होते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पौधारोपण भी हम इस मौसम में करते हैं, लेकिन जब भी हम कभी पौधे लगाएं तो उन पौधों को लगाने के बाद छोड़ ना दें, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, उनकी समुचित देखभाल हम ज़रूर करें, क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं तो उनकी हम देखभाल अगर नियमित करेंगे तो उनका विकास जो है अच्छे से होगा। और ये कमेंट हमारे पास आ चुका है, इसे भेजने वाले हैं पारस कुशवाहा, और ये लिखते हैं कि मौसम के

को देखते हुए छाता या रेनकोट जरूर रखें ताकि बारिश के समय परेशान ना होना पड़े। जागरूकता में ही बचाव है। अच्छी बात आपने कही है। और प्रोग्राम में बात चल रही है बरसात की, तो बरसात में बहुत अच्छा लगता है, और बरसात जब होती है तो हमारा मन कहता है कि ये बरसात जो है वो ये झड़ी लगातार बरसती रहे और हम लोग इसका आनंद लेते रहें, क्योंकि मौसम में गर्मी से राहत भी होती है और जब बूंदों की झड़ी लगती है तो बरखा रानी बड़े प्रेम से बरसती है, और ऐसा बरसते हुए देखना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।

जी हाँ, बरखा रानी जरा जम के बरसो, हम भी यही कहते हैं, क्योंकि मौसम जब खुशनुमा होता है तो मन करता है कि ये बरसात जो है बरसती रहे और मन जो है आनंद से भीगा रहे। और इस समय हवा भी जो है मौसम में ठंडी हो जाती है, और वो ठंडी हवा जो है वो गर्मी से बहुत राहत देती है। और ऐसे मौसम में है जब हम बैठते हैं तो बहुत सी यादें भी हैं वो हमारे मानस पटल पर आ जाती हैं कि पहले ऐसे बरसात होती थी, ऐसा मौसम होता था, और ऐसे मौसम में ऐसा लगता था, ऐसा करना चाहिए हमें। तिलकराज अरोड़ा का इसी बीच कमेंट आ गया है, हम इस कमेंट को शामिल करते हैं। ये लिखते हैं कि सप्रेम नमस्ते, मानसून में घर से बाहर निकलते समय छाता लेना चाहिए और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको ज़रूर लेना चाहिए। तिलकराज अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमें कमेंट भेज रहे हैं। और बात हम कर रहे थे आपसे प्रोग्राम में मौसम की और मौसम के रुख की, तो जब ऐसा मौसम होता है तो घनन घनन एकदम बादल छा जाते हैं आसमान पर, और आसमान पर छाए ऐसे बादल देखकर मन जो है बहुत खुश हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, और बादलों से उम्मीद करता है कि ये बरसते रहें और मन को भिगोते रहें, तन को भिगोते रहें, और हमें आनंद

देते रहें तो घनन घनन जब बादल घिरते हैं तो मन मयूर जो है वो नाच उठता है और आनंद से गा उठता है। तो हम भी आपको सुनवा रहे हैं गीत 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से।

आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM से, और बात हो रही है मानसून के मौसम में तैयारी की, तो आपके कमेंट भी प्रोग्राम में हमें लगातार मिल रहे हैं। अगला कमेंट हमारे पास पहुंच चुका है और इस कमेंट को भेजने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा, और अगला कमेंट हमारे पास आया है, ये है सुभाष का। ये लिखते हैं कि छाता जरूर रखें, हो सके तो रेनकोट या मोबाइल के लिए भी कोई पॉली बैग या कोई ऐसी सामग्री रखें जिससे कि मोबाइल हमारा ना भीग जाए। तो बात मौसम में चल रही है बरसात की, तो बरसात का जब मौसम चलता है तो गर्मी से एकदम मौसम ठंडा हो जाता है और हमें राहत मिलती है गर्मी से, साथ ही ठंडी हवा चलने लगती है, और जो ठंडी हवा होती है वो मन को एकदम आनंदित कर देती है और मन प्रसन्न हो जाता है और गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है और यादों में खो जाता है और गीत संगीत भी सुनना चाहता है।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली के प्रसारण आप सुन रहे हैं और इस समय कार्यक्रम चल रहा है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आप हमसे जुड़े हुए हैं प्रोग्राम के माध्यम से और अपने कमेंट के माध्यम से। तो मौसम की बात हो रही है, बरसात की बात हो रही है और मानसून के मौसम में तैयारियों की बात हो रही है। तो कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य का कमेंट है और इनके परिवार के सभी नाम भी इसमें लिखे हुए हैं, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति, सबके कमेंट हमारे पास आए हुए हैं। और लेकिन इन्होंने इसके बारे में नहीं लिखा है कि मानसून के समय क्या तैयारी करें, तो ये हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि ये बात उनको ज़रूर लिखनी चाहिए, कमेंट में अपनी पूरी बात भी लिखें। लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि जो सोशल मीडिया पर टाइप करना नहीं जानते हैं, कुछ पुराने हमारे ऐसे श्रोता हैं जो मोबाइल एंड्रॉयड ऑपरेट नहीं करते या नहीं चलाते, तो ऐसा भी है। तो मौसम के समय तैयारी तो होनी ही चाहिए और हमें अपने घर के आसपास जलभराव नहीं होने देना चाहिए और बारिश में भीगने से बचना चाहिए, और बच्चों को तो खासकर कि क्योंकि बच्चे जो हैं जब भी बारिश आती है वो नहाने लगते हैं, और ऐसे में थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। और मौसम जब खुशनुमा होता है, बरसात होती है और ठंडी हवा चलती है, काली घटा घिरती है, तो मन तो नहीं ही मानता है बरसात में नहाने से, बरसात का आनंद लेने से। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए 100.4 FM आकाशवाणी बरेली, और लेते रहिए बरसात का आनंद और साथ ही गीतों की बरसात का भी आनंद हमारे साथ 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से।

काली घटा आ ही गई झूम के, और मौसम में ये घटा झूम के भी आ गई है। अभी मैं बाहर गया था तो मौसम कुछ ऐसा ही कह रहा है कि हम आज जमकर बरसेंगे। तो देखते हैं कि मौसम का अनुमान क्या है और मौसम की स्थिति क्या है और कितनी बरसात होगी। लेकिन मौसम फिलहाल खुशनुमा है, काले काले बादल छाए हुए हैं और मौसम जो है एकदम आनंददायक है। और प्रवीण चौहान का कमेंट हमारे पास इसी बीच आ गया है, ये भी लिखते हैं कि घर से बाहर निकलते समय छाता और ऐसी सामग्री जरूर लें जिससे आपके जो आवश्यक उपकरण आप लेकर चलते हैं, मोबाइल है, ईयरबड्स है, ये भीग ना जाए। तो अच्छी बात आपने लिखी है, काले काले बादल छा रहे हैं और बरसात का मौसम बन गया है, घटा घिर गई है। तो ये घटा देखते हैं

जी जी हाँ, आप 100.4 FM सुन रहे हैं, कार्यक्रम है आपकी बात और आकाशवाणी के साथ, और घड़ी अब 5 बजाने को है, तो कार्यक्रम का समय अब यहीं तक रहेगा और अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति। तो आनंद लीजिए बरसात का, मौसम का, और इस प्यारे प्यारे से गीत और संगीत का 100.4 FM पर लगातार। तो जाइएगा नहीं कहीं, कुछ ही देर में आपके बीच फिर हाजिर होते हैं नए कार्यक्रम लेकर। अभी आप आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देने का समय है हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। तो बता देते हैं आपको कि 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में आएंगे। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संसार, कार्यक्रम नारी संसार, और प्रस्तुत करेंगी भावना कंचन। और शाम 6:00 युववाणी कार्यक्रम होगा, नेहा लेकर आएगी आपके लिए ये कार्यक्रम। और 6:30 पर आप किसानवाणी कार्यक्रम सुनेंगे, रविंद्र कुमार और क्षमा सक्सेना आपको ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और उसमें विशेष सेगमेंट रहेगा किसानवाणी कार्यक्रम में हेलो किसान। और इसी के साथ बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल और नसीहत के साथ गीत संगीत से आपका कार्यक्रम में मनोरंजन भी कराया जाएगा। इसके बाद हम शाम 7:00 से आपको ले चलेंगे दिल्ली, दिल्ली से आपको जोड़ेंगे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल ग्राउंड लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के आंखों देखे हाल से। तो और कल की सभा प्रतिदिन की तरह हमारी शुरू होगी 5:53 पर, और सुबह 8:15 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण। और इसके बाद हम आपको जोड़ेंगे यंग बरेली कार्यक्रम से। यंग बरेली कार्यक्रम होगा 8:15 पर, और 8:45 पर लोकरंग कार्यक्रम में आपको लोकगीत सुनवाएंगे। और 9:00 से 10:00 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम रिले करेंगे, जिन्हें आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। और 10:00 आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, और आपकी पसंद कार्यक्रम में आपकी फरमाइशों के गीत सुनवाए जाएंगे, और सोशल मीडिया पर आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी फरमाइश उस प्रोग्राम में भेज सकेंगे। तो और कल पूर्वाहन 11:00 सबरंग कार्यक्रम होगा, और अनुरोध गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल अपराहन 1:00, और रसरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे कल अपराह्न 2:00, और शाम 4:00 कार्यक्रम रहेगा आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और भजन संध्या सुनिए शाम 5:05 पर, और 5:30 पर होगा कार्यक्रम नारी संसार। 6:00 युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा, और कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत। और कल ग्राम जगत कार्यक्रम में बात करेंगे ग्रामीण विकास और कुटीर उद्योग पर। और कल शाम 7:00 प्रायोजित कार्यक्रम होगा कृषि पाठशाला, और कल शाम 7:31 पर सुनिएगा अनुरोध गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के गीत जो आप अनुरोध करते हैं अपने खातों के जरिए। तो ये थी हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर, और अब आप सुनेंगे भजन संध्या। भजन संध्या कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं भजन संध्या की शुरुआत गजानन गणेश को वंदन के साथ।

जय गणेश गणनाथ दया निधि सकल विघ्न कर दूर हमारे गजानन गणेश, आप सबके भी विघ्न हरें और आपको उत्तरोत्तर प्रगति दें, उन्नति दें। और अब चलते हैं कार्यक्रम में अगले भजन की ओर। तो अगला भजन हम आपको जो सुनवा रहे हैं वो है माधवी मधुकर के स्वर में।

इसी के साथ भजन संध्या अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप भजन संध्या कार्यक्रम सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं और अब समय है कार्यक्रम नारी संसार का। और नारी संसार कार्यक्रम लेकर स्टूडियो में उपस्थित हैं भावना कंचन, तो जुड़ते हैं कार्यक्रम नारी संसार के साथ।

गुड इवनिंग, नमस्कार। नारी संसार प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन। अब देखिए, अगर हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने की बात करें तो पहले के जमाने में पत्रों का, खतों का इस्तेमाल लेना होता था और फिर धीरे धीरे फोन आ गए, फोन पे बातचीत होने लगी और अब सोशल मीडिया के जरिए हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया है ही ऐसा। अब देखिए ना, पहले आप हमारे कार्यक्रम एफएम सेट पर सुनते थे, फिर धीरे धीरे फोन में हेडफोन लगाकर सुनने लगे और अब न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुनते हैं, है ना। और अब जानकारी आप लेते हैं हमारे फेसबुक पेज से आकाशवाणी बरेली के, और अपनी बात तुरंत के तुरंत ही कमेंट के जरिए हमें लिख करके भेज देते हैं। तो आज आपने नारी संसार की पोस्ट तो पढ़ी ही होगी और हमारा आज आपसे सवाल ये है कि आप सोशल मीडिया कब से चला रहे हैं, कब से आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। तो जल्दी से हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, नारी संसार की पोस्ट के कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से लिख भेज दीजिए कि आप कब से एक्टिव है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। तो जो सोशल मीडिया है वो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि सीखने का, सिखाने का और साथ ही साथ समाज को जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है। देखा जाए तो युवाओं के लिए ये नई शिक्षा, रोजगार, नवाचार और अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने का अवसर है। लेकिन याद रखिए, लाइक्स और फॉलोअर्स से कहीं अधिक जरूरी है आपका अपना ज्ञान, आपका अपना चरित्र और आपकी वास्तविक पहचान। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की तो उनके लिए सोशल मीडिया अपनों से जुड़े रहने का बहुत ही सुंदर माध्यम है। वीडियो कॉल, पारिवारिक संदेश और पुरानी यादों की तस्वीरें उनके जीवन में नई खुशियां ला सकती हैं। लेकिन किसी भी अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक या पैसे मांगने वाले संदेश पर भरोसा करने से पहले अपने परिवार या विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह जरूर लें। देखा जाए तो जरा गौर से सोचिए, एक गांव का किसान अपने मोबाइल पर मौसम की

जानकारी देखकर फसल की तैयारी कर रहा है। कहीं दादी अपने पोते से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर वीडियो कॉल पर मुस्कुरा रही हैं, वहीं एक युवा अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपने हुनर से, अपने टैलेंट से दुनिया भर के लोगों तक पहुंच रहा है। और एक छोटी सी दुकान का मालिक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट्स देश के अलग अलग राज्यों तक भेज रहा है। ये केवल कल्पना नहीं बल्कि आज के भारत की बदलती तस्वीर है और सोशल मीडिया की ताकत है। आज 30 जून है, विश्व सोशल मीडिया दिवस है और इस अवसर पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी डिजिटल दुनिया की। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये गाना।

0: इनसे मिली इग्नाइट में आप सभी श्रोताओं का और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक जानी मानी लेखिका है और शिक्षिका है और इन्होंने अपने करियर में एक बहुत ही अच्छा खासा मुकाम हासिल किया हुआ है। तो आइए कार्यक्रम में स्वागत करते हैं श्री राशि सक्सेना जी का। राशि जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में सेटेक में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भावना जी।
0: राशि जी, जैसे कि आप एक लेखिका है और साथ ही साथ शिक्षिका भी है, इसका अर्थ सीधा साधा यही निकलता है कि आप अपने विचारों को अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपनी लेखन शैली के बारे में बताइए।
1: सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आज आपने मुझे वो मौका दिया मैं लोगों तक अपने मन की बात पहुंचा सकूं। और रही बात मेरे साहित्यिक सफर की, तो ऐसा कह सकती हूँ कि थोड़ा पारिवारिक परिवेश मेरा इतना अच्छा था। मेरे नाना जी भी लेखक थे, मेरे पापा भी लिखते रहते थे और मेरी दादी भी बहुत एक क्रिएटिव लेडी थी। उन्होंने अपने गाने सुनाती थी हम लोग को बजाती, तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं एक ये दिमाग में मैसेज, एक संदेश रहा कि कुछ ना कुछ अपने में बातों की अभिव्यक्ति करते रहने चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जब अपने मन में भी जब आसपास की चीजों को नोटिस किया, संवेदनाएं जागी, तो ऐसा लगा अगर उनपे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि लेखन के माध्यम से प्रेषित करा जाए ताकि वो लोगों तक पहुँचे।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि अपने लेखन के माध्यम से जन जन तक पहुंचना और अगर कहीं किसी को उससे कोई लाभ हो सकता है तो वो देखा जाए तो एक हमारी सफलता की कड़ी होती है। लेखन की शुरुआत जब आपने करी तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
1: ना मुश्किल नहीं लगा मुझे, रोज की लाइफ में ये मेरे साथ शामिल ही रहा है। डेली मेरी एक लिखने की आदत थी ही, लेकिन हाँ कुछ चीजें जरूर सामने आती थी क्योंकि कई बार समय की व्यस्तता, जैसे कि मैं एक जॉब भी करती हूँ, फिर मेरा अपना परिवार भी है, वहाँ भी मेरे कुछ दायित्व तो बनते हैं, तो ये होता था कि कब समय निकालने के हम लिखें। तो फिर दिमाग में एक दिन बस यही आया, जब समय मिले तब वो लिखने में लगा देंगे। तो धीरे धीरे यही स्ट्रेटेजी शायद मेरे बहुत काम आई। मैं थोड़ा बहुत अपने मोबाइल में ही लिखती रहती थी, मोबाइल ने समय मेरा बड़ा साथ दिया क्योंकि शायद डायरी अगर मैं हजारे चार्ज तो ले नहीं सकती थी, बट मोबाइल तो रहता ही था साथ में। तो ये आधुनिक तकनीक और प्रे अंदर एक लिखने की जो इच्छा थी, तो बस वही प्रेरणा थी। और सिर्फ कई चीजें मुझे ऐसे लगे कि हाँ, इन पे बात करना जरूरी है, किसी से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खुद से करें और कभी कोई और पढ़े तो अच्छा रहेगा। तो ये सोच के फिर लिखना शुरू किया। दिक्कतें ये भी आती थी कई बार कि जो एक माहौल होता है ना आसपास की, एकदम शांति है और ये सब है, ये सब कमी रहती थी, लेकिन शायद मन के जो जज्बात के जो तूफान चल रहे थे उनके कारण मुझे वो सब इतना सामना करते हुए भी मुझे आसानी हो गई कि मैं अपनी बातें लिख पाई।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस पास इतनी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन अगर हमारा संकल्प बिल्कुल दृढ़ हो, बिल्कुल

0: कॉन्सेंट्रेट होके काम करे तो रास्ता बनता जाता है। इतना जरूरी है कि आप अपने शौक को इतना बड़ा कर लें कि आगे चलकर आप उसी फील्ड में उसी तरफ आगे कदम बढ़ाएं।
1: मेरा मानना है कि अगर आप जीवित हैं, अगर आपको ये महसूस करना है कि आप जीवित हैं, तो आपके पास एक शौक जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो शौक जब आप पूरा करते हैं तब आपको जो खुशी मिलती है वो एहसास कराती है कि आप और लोगों से काफी अलग है, कुछ आपकी अलग चीज है। तो वो जो उस समय की फीलिंग होती है आपको शौक पूरा करने पर ही आ पाती है। तो इसलिए अपने शौक जरूर रखें। चाहे मैं ये नहीं कहूँगी सब लिखने का ही करें, चाहे आप गाने का करें, चाहे डांस का करें, चाहे आप पेड़ लगाते हैं जैसे लोग उसका करें, चाहे कुछ भी करें, मगर करें, अपने लिए समय जरूर निकालें। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए और आपने खुद को ही समय नहीं दिया तो वो हम एक तरह से मशीन हो गए ना, रोबोट हो गए।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक और मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि कितना जरूरी है अपने मन के भावों को व्यक्त करना, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए।
1: ये तो शायद आपके जीवन का सबसे जरूरी काम है, क्योंकि आप देख सकते हैं आजकल बहुत सारी मानसिक तनाव, मानसिक प्रॉब्लम्स आप लोग देखिए यंगस्टर्स में तो बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है। हम लोग थे ना, वो अलग अलग माध्यमों से अपनी बातें किसी ना किसी रूप में साझा करते थे, मगर यंगस्टर जब बेचारे बड़े हो रहे हैं तो शायद कोरोना कह लीजिए या आजकल का कॉम्पिटिशन कह लीजिए, ये लोग अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाते। माँ बाप घर में जब ये छोटे होते हैं तो 12वीं तक तो पढ़ाई का ही इतना प्रेशर होता है इनपे कि इनको ये दूर रखा जाता है कि कुछ दिमाग नहीं लाएंगे, मन में आए ना, छोटी छोटी इच्छाएं आती है, माँ बाप या तो उसे पूरा कर देते हैं या दबा देते हैं, और ये दोनों ही कंडीशन गलत है। तो इसीलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ही एक मात्र साधन है जिसके थ्रू वो जो आपके अंदर एक दबाव बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है, या कह सकते हैं तनाव बन सकता है, उससे आपको थोड़ा आराम मिलता है। क्योंकि जब आप अपनी बात बोल लेते हो तो आपके दिमाग में खुद ही एक सॉर्ट आउट होने लगता है कि हम किस चीज में उलझ रहे थे, अब उसको हम कैसे देखें, नजरिया बढ़ने लगता है और आपकी एक मानसिक सोच भी दृढ़ होती जाती है, आप खुद के लिए भी एकदम साफ दृष्टिकोण देख पाते हैं जिसके थ्रू आप और आगे बढ़ सकते हैं। आगे की चीजें, आपकी मंजिलें जो भी आपने सोची हैं वो संभव है या नहीं है, या उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, या उनमें तो ये सब अपने आप से एक तरह से फिल्टर होने लगता है
0: जी।
1: अगर आपने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की तो आप अंदर ही अंदर उलझे हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं सामने क्लियर होगा आपका, तो वो कोई भी एज आपकी है, चाहे वो आप वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं या आप बाल मन में हैं। मेरा मानना है माँ बाप को अपने बच्चों से डेली कुछ ना कुछ बातें करनी चाहिए, उनके दिमाग में क्या ख्याल आया, क्योंकि यही तो क्रिएशन को बढ़ावा दे रहा है। आजकल की जरूरत है कि आप कुछ रचनात्मक हो या आप कुछ खोजकर्ता हो, किसी भी तरह की खोजें, आप अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी न किसी साहित्यिक माध्यम से जरूर साझा करें, जरूर उसे अभिव्यक्त करें, तभी आप अपने मन तक खुद पहुँच पाए या अपने आप तक पहुँचने का रास्ता है।
0: चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी?
1: बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप दुनिया में किसी से मिले ना मिले, अपने से जरूर मिले दिन में एक बार, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर के शौक को जिंदा रखें, आपके अंदर जो भी अभिव्यक्ति करने का साधन आपको सुलभ लगता है उसको समझें और उसको फॉलो जरूर करें।
0: जी राशि जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, और इस समय हम आपको बता देंगे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने इस वार्तालाप से कुछ ना कुछ जरूर समझा होगा, कुछ सीखा होगा, अपने मन की बातों को कहने के बारे में सोचा भी होगा। आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये तो था हमारा आज का सेगमेंट इनसे मिलिए, जिसमें हमने बातचीत करी डॉक्टर राशि सक्सेना जी से, और अब बारी है एक गाने की, तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

मेहरा, हम आपसे बातचीत कर रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, और अगर हम बात करें अपने ग्रामीण भारत की, तो आज डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो गांवों की तस्वीर बदल रही है। किसान मौसम का पूर्वानुमान देख रहे हैं, नई कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे मिल रही है, और साथ ही साथ ग्रामीण उद्यमी जो हैं वो अपने स्थानीय उत्पादों को देश विदेश तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये डिजिटल परिवर्तन तभी सफल होगा जब इसके साथ सही जानकारी और डिजिटल जागरूकता भी जुड़े। सोशल मीडिया जितनी तेजी से अच्छी बातें फैलाता है, उतनी ही तेजी से गलत जानकारी भी फैल सकती है। इसलिए किसी भी समाचार, वीडियो या संदेश को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। याद रखिए, हर वायरल खबर जो है वो सत्य नहीं होती, लेकिन हर जिम्मेदार नागरिक सही जानकारी जरूर साझा करता है। डिजिटल सुरक्षा भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी पासवर्ड बनाएं, बहुत मजबूती के साथ बनाएं, दो स्तरीय सुरक्षा को अपनाएं, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी किसी से भी साझा ना करें, और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। एक और बात, क्या कभी आपने महसूस किया है कि हम ऑनलाइन से तो बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार आसपास के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन साथ ही साथ परिवार के साथ बैठकर बातचीत भी करें, बच्चों के साथ खेलें भी, बुजुर्गों का हाल भी पूछें, और साथ ही साथ प्रकृति के बीच कुछ पल बिताने के लिए भी समय निकालें। यही डिजिटल संतुलन है। तो विश्व सोशल मीडिया के दिवस पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि तकनीक तभी सार्थक होती है जब वो समाज को जोड़े, ज्ञान बढ़ाए और साथ ही साथ विश्वास को मजबूत बनाए। और अब समय है एक गाने का, तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

तो बहरा, आपने ध्यान दिया होगा और सुना भी होगा कि सोशल मीडिया हमारे लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़रूरी है कि हम उसके नेगेटिव पॉइंट भी ध्यान में रखें। कोई भी तस्वीर या कोई भी वीडियो साझा करने से पहले ये विचार कर लें कि इसे साझा करना कितना ज़रूरी है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। फिलहाल हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर ही हमारा आज का प्रश्न था कि आप कब से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो इसका जवाब हमें प्रवीण चौहान जी ने भेजा है कि वो सोशल मीडिया पर 2009 से एक्टिव है, यानी कि 2009 से वो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं। तो प्रवीण जी, आपका जवाब जो है हमें

मिल चुका है और साथ ही साथ हम और सभी सुनने वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रोग्राम आपको कैसा लगता है उसके बारे में भी कुछ शब्द लिखें, अपने मन के विचार साझा करें। और याद रखें कि जब आप हमें कमेंट लिख करके भेजते हैं तो तुरंत ही हम तक पहुंच जाते हैं, यानी कि आपके और हमारे बीच में जो है सिर्फ एक कमेंट का ही रास्ता है। तो जल्दी से आप अपने कमेंट भेजिए, प्रोग्राम कैसा लगता है ये ज़रूर आप ईमेल के ज़रिए या फिर कमेंट के ज़रिए आप लिख करके भेज सकते हैं। और अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम आपसे और ज़्यादा बातचीत कर सकें। प्रोग्राम कैसा लगा चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, और पिन कोड है 243001। और अब अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन को दीजिए अनुमति। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।

नारी संसार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी बजा रही है संध्या के 6 और ये समय होता है कार्यक्रम युववाणी का। तो नेहा आ चुकी है स्टूडियो में कार्यक्रम युववाणी लेकर, तो चलते हैं युववाणी कार्यक्रम की ओर।

गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का प्रोग्राम युव वाणी में आपकी आज की रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह के साथ। श्रोताओं, आज है जून का आखिरी दिन यानी कि 30 जून एंड आज के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, जो कि 30 जून 1908 में हुई टुंगुस्का घटना यानी कि टुंगुस्का इवेंट की स्मृति में मनाया जाता है। टुंगुस्का घटना साइबेरिया में एक एस्टेरॉयड के एक्सप्लोजन के कारण हुई थी, जिसके कारण 830 वर्ग मील के क्षेत्र में कई मिलियन ट्रीज जो थे वो नष्ट हो गए थे। वैसे तो ये प्लेस काफ़ी दूर और सेपरेटेड है, जिसके कारण विस्फोट में कम से कम जनहानि हुई, लेकिन इसकी लहर सैकड़ों मील तक दूर महसूस की गई थी। ग्रहों की सुरक्षा में वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 में इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे घोषित किया गया था। एंड दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के अकॉर्डिंग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का पृथ्वी से टकराव एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसे मानवीय तौर पर रोका जा सकता है। इसलिए इस दिवस का उद्देश्य एस्टेरॉयड्स के प्रभाव के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और साथ ही दोस्तों, इसके साथ साथ एक और खास दिवस मनाया जाता है जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, जो कि IPU यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना की याद दिलाता है, जो दुनिया भर की संसदों का एक वैश्विक संगठन है। ये दिन सरकारों और नागरिकों को याद दिलाता है कि एक पारदर्शी, जवाबदेही और स्वतंत्र संसद लोकतंत्र की सबसे बड़ी आधारशिला है। ये दिन संसदों को समय के साथ आधुनिक चुनौतियों जैसे कि युवाओं और महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और कई सारी नई तकनीकों का उपयोग करने के अनुरूप खुद को ढालने का भी अवसर प्रदान करता है। और ऐसे ही हम प्रोग्राम में अपने कार्यक्रम को कंटिन्यू रखेंगे, बट अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक गाने का, तो चलिए सुनते हैं आज का पहला गीत।

0: श्रोताओं, आज का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन से बढ़ गया है और जो हमारी आज के जनरेशन है, चाहे टीनेजर्स हों या अडल्ट्स, हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है, और जो कि अच्छा भी है क्योंकि हम अपने लाइफ में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो। और आजकल जो हर पर्सन है उसके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, और आज हम लाए हैं अपने ऐसे साथियों के लिए एक वार्ता जिसमें आप SSC एग्ज़ाम्स के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए, इस वार्ता में हम बात करेंगे शालिनी से SSC एग्ज़ाम्स के बारे में।
1: नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है और मैं SSC एस्पिरेंट हूँ। बढ़ती उम्र के साथ हर किसी को अच्छी लाइफस्टाइल और सेटल्ड फ्यूचर के लिए जॉब और करियर चाहिए होता है, और मैंने अपने लिए गवर्नमेंट सर्विस चुनी। उसके लिए मैं SSC एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक मल्टी टायर एग्ज़ाम है जो सेंट्रल लेवल पर होती है और अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑफिसेस में वैकेंसीज निकालती है। SSC बहुत तरह के एग्ज़ाम्स करवाती है जैसे CGL, CHSL, MTS, स्टेनो एक्सेट्रा। मैं SSC स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। SSC के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें मेन चार सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। मैथ सब एग्ज़ाम्स में नहीं होती, जैसे SSC स्टेनो में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, GS और मैथ्स। कवर करने के लिए इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता है। अगर आपको मेरी तरह मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप भी स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं। स्टेनो का नेक्स्ट स्टेप स्किल टेस्ट होता है, उसके लिए हमें शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है। मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप शॉर्ट हैंड में थोड़ी सी मेहनत करके स्टेनोग्राफर इजीली बन सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे मैथ्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इसकी प्रिपरेशन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जिनको शॉर्ट हैंड आती है उनके लिए थोड़ा एडवांटेज है इस पोस्ट में। अदर एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसमें होने वाली सबसे बड़ी पोस्ट है CGL। ये ऑफिसर लेवल पोस्ट है और इसके लिए काफ़ी स्टेप्स होते हैं। पहले आपका होगा Tier 1, जो मैक्सिमम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 1 आवर। इसे क्वालिफाई करने के बाद

आपका होगा टायर टू, जिसमें थ्री सेक्शंस होते हैं। सेक्शन वन मैथ रीजनिंग, सेक्शन टू इंग्लिश GS एंड सेक्शन थ्री कंप्यूटर फिर टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपको बेसिक 25 से 30 स्पीड होनी चाहिए। सब क्लियर करने के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसी बड़ी जॉब्स ले सकते हैं। स्टेनो की बात करूँ तो वो 10+2 यानी 12th क्लास पास आउट बच्चों के लिए होता है, और CGL एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का होता है। और भी एग्ज़ाम है जैसे CHSL, ये भी टू टायर एग्ज़ाम है जिसमें फिर वही सिलेबस और सब्जेक्ट है। SSC की कोर्स की बात करें तो वो 6 महीने का होता है, और आपको तैयारी करने के लिए 1 से 1.5 साल लग जाता है, जिसमें GS काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK और आपकी बेसिक जनरल नॉलेज। मुझे ये कोर्स करने के लिए 6 महीने लगे थे, और बाकी मैं अपनी तरफ से अब सेल्फ स्टडी कर रही हूँ पिछले 1 साल से, और पेपर आने तक मैं लगातार मॉक दे रही हूँ, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे और मैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकूँ। जैसे कि मैं डेली टेस्ट लगाती हूँ, अपना स्कोर इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, टेस्ट के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही हूँ, टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़ा सकती हूँ मैं वो कोशिश कर रही हूँ। ऐसा है, टेस्ट देने से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या हैं, आप उन क्वेश्चंस पे वर्क कर सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में और अच्छा कर पाएंगे। तो टेस्ट देने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, मुझे फ़िलहाल काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं, क्योंकि टेस्ट से मैं अपनी स्ट्रेंथ को पता कर पा रही हूँ, अपना स्कोर बढ़ा पा रही हूँ और नई नई चीज़ें सीख पा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ बुक्स में हर चीज़ लिखी हुई नहीं होती है, हम कभी कभी एग्ज़ाम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। लाइफ में जॉब के इतने ऑप्शंस हैं, पर फिर भी हमें समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। शायद हमें सही टाइम पर वो गाइडेंस नहीं मिली है, हमें किसी ने ये प्रोसेस नहीं बताया कि हमें क्या करना चाहिए। बचपन में सबको सिर्फ 2-3 जॉब्स ही पता होती हैं, जैसे कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या पुलिस बन जाओ। अगर आप युवा हैं, आपका ग्रेजुएशन चल रहा है या आपका अभी अभी 12th हुआ है, तो आपके पास अभी भी टाइम है कि आप अपने करियर के बारे में सोचें और उसके लिए प्रिपरेशन करें, उसकी तैयारी करें, किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए, या किस सेक्टर में आपको जॉब ढूंढनी चाहिए, या किस चीज़ का फॉर्म भरना चाहिए, कैसे फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारी क्या कहते हैं जगहों पे बहुत वैकेंसीज निकलती हैं, जॉब्स आती हैं, अलग अलग जॉब ऑफर मिलते हैं, किसी को नहीं पता कब किसका किस्मत उसको कितना बड़ा ऑफिसर बना दे। अब भी टाइम है, प्रिपरेशन करिए, अलग अलग फॉर्म्स भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और पहचानिए आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। सो दोस्तों, ट्राई करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।

श्वेताओं, आज है महान स्वतंत्रता सेनानी और जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसी नाम से वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, यानी के दादा भाई नौरोजी। इनकी पुण्यतिथि जो कि हर साल 30 जून को मनाई जाती है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने 3 बार इसके अध्यक्ष के रूप में काम किया, साल 1886, 1893 और 1906 में। और दादा भाई नौरोजी के प्रारंभिक करियर में 1874 में बड़ौदा के दीवान के रूप में सेवा करना शामिल था। फिर बाद में ये इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने भारतीय हितों की वकालत करना जारी रखा। 1892 में ये लिबरल पार्टी के सांसद के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए और हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। फिर उन्होंने 1895 तक फिन्सबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपनी फेमस बुक जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी का सिद्धांत, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देकर ब्रिटिश शासन द्वारा भारत की संपत्ति लूटने का खुलासा किया था। ये बुक 1901 में प्रकाशित हुई थी और फिर वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने पहली बार स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की मांग रखी थी। उन्होंने भारत को आज़ाद रखने की लड़ाई लड़ी, लेकिन नरम दिल से। उन्होंने कभी भी जो वॉर है या फिर लड़ाई है उसको बढ़ावा नहीं दिया। जो भी चीज़ें हों वो बस आसानी से हों और बिना लड़े हों। और फिर इनका निधन 30 जून 1917 को 91 वर्ष की आयु में बॉम्बे में हुआ था। श्रोताओं, इसके बाद हम बताएंगे आपको आज के सवाल का जवाब, जो कि हमने अपने सोशल मीडिया के पेज के थ्रू पूछा था। बट उससे पहले हम सुनेंगे एक गीत अपने आज के कार्यक्रम में।

चुनाव हमारा आज का सवाल था कि जो हमारा शरीर है उसमें कितनी पसलियां होती हैं। तो जो मानव शरीर है उसमें कुल 24 पसलियां होती हैं, जो कि 12 पेयर्स के पेयर्स में होती हैं। ये पसलियां हमारी छाती यानी कि रिब केज के रूप में फेफड़ों और हृदय जैसे अंगों की सुरक्षा करती हैं, यानी कि जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इस रिब केज के अंदर रहते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं। और ये जो पसलियों की संख्या है, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब में समान ही होती है। और हमारे आज के सवाल का जवाब हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स ने अपने कमेंट्स के थ्रू बिल्कुल ही सही दिया है, जो कि हैं मुकेश कश्यप, जॉन कैस्ट्रो, राम कुमार रेवार, मीका विर्क, विजय सुरालकर, मुकेश कश्यप, नवी हसन अब्बासी, हीरामणि वर्मा, दिग्दर्शन कौर व अन्य कई सारे लिसनर्स ने। तो दोस्तों ऐसे ही कमेंट्स करते रहें और हम आपके नामों को शामिल करते रहेंगे। वेल, कार्यक्रम में जो अब समय है ना वो बहुत ही लिमिटेड बचा है, तो युववाणी में सुनते हैं अब आज का आखिरी गीत।

0: युवानी का समय आज बस यहीं तक सीमित था। अपनी रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह को दे अनुमति, बाय बाय एंड टेक केयर।
1: अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और स्टूडियो की घड़ी बता रही है समय शाम के 6:30 होने वाले हैं। और अब ये समय है कार्यक्रम किसानवाणी का, तो किसानवाणी कार्यक्रम लेकर स्टूडियो में आ चुके हैं।

0: कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सब भैया और बहनों को आपके भैया रघु
1: और आपकी बहन क्षमा की राम राम।
0: और सुनाओ क्षमा बहन, का हाल चाल है?
1: बढ़िया है हालचाल भैया। और आप बताओ, आपके का हाल चाल है? खेती बाड़ी सब कैसी चल रही है?
0: देखो क्षमा बहन, बात करें खेती की तो धान लग गए हैं। और अब हमारे धान लगे भी एक खेत में तो ही गए हैं 10 दिन।
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा।
0: एक के लगवाए परसों।
1: अच्छा अच्छा,
0: आप सुना वो का चल रहा खेती बाड़ी में?
1: भैया हमारे भी 3-4 दिन हो गए धान की रोपाई करा दी, और आज तो आपके भैया ने जाके वो खरपतवार वाली दवाई आता है ना भैया, वे भी छिड़कवा दी, क्यों ताकि घास फूस ना हो पाए, खरपतवार ना हो पाए।
0: बिल्कुल। और क्षमा बहन देखो, आज तो बड़ो अच्छो लाग रहा है कि आज हमारे जैसे जो बारिश हुई गई ना रात से, मेहो बरस गो तो जल आ रही है कि जैसे खेत पे गए सवेरे उठ के तो कैसे हरियाली एकदम, क्योंकि जो पेड़ पौधा है कतई मुरझा चुके हैं। और जो रात बारिश भई है वासे ऐसी लग रही जैसे बालक ना खिलखिलाए के हंसता है, ऐसे ही जा लग रही कि जैसे फसल हंस रही है, गन्ना हंस रहा हुआ है, और जो पेड़ पौधा है जैसे पॉपुलर है, लिप्टिस है, वो सब भी हमें ऐसी लग रही कि कतई हंस रही है।
1: बिल्कुल रघु भैया, जब मानसून का मौसम ऐसा ही होता है कि हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली दिखता है, और जहाँ इतनी गर्मी के मौसम में तो थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, और हमारी खेती बाड़ी के लिए तो भैया अमृत समान है ही जा बारिश।
0: बिल्कुल। और देखो ऐसा है कि हम सिंचाई कर दें तो सिंचाई जब हम करते हैं खेत की तो बा में जो है कि प्यास लागी तो पानी लगा दो, और बाकी बाद जो है कि अब जो बारिश होती है तो वह एक तरह से अमृत वर्षा हो जाती है। अमृत वर्षा ऐसी हो जाती है कि बाको का है कि वो कोपल जो होती है हमारी, गन्ना की कोपल हुई गई या धान की हमने जैसे चौराई करी है, तो बा में जो कोपल हुई गई तो वह कोपल के हिसाब से बहुत, मतलब जो है कि जो सूढ़ी लग रही है ना गन्ना में,
1: हाँ
0: बहुत दूर हो जाती है, और बासे जाए कि मतलब एक फसल को नई ताजगी मिलती है।
1: बिल्कुल रघु भैया। और देखो रघु भैया, अब अपने कार्यक्रम में और बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथी जो हैं वो पेन और कॉपी लेकर इंतजार कर रहे होंगे आज को सवाल को। तो बता दो आज का सवाल लेकर आयो रघु भैया, या हम ही बता दें आज को सवाल?
0: आप ही बताओ क्षमा बहन, क्योंकि भैया बहन सोचेंगे कि क्षमा बहन सवाल पूछती है कार्यक्रम में, तो आज रघु भैया ने क्यों पूछो।
1: तो बिल्कुल भैया बता देते हैं आज को सवाल। आज को सवाल है, धान की फसल में पहला खाद कब और कितना डालें?
0: बहुत अच्छो सवाल पूछो है क्षमा बहन आज आपने, क्योंकि धान की रोपाई कर रहे हैं भैया, कुछ की रोपाई हो गई है, तो ऐसे में जा है कि जो सवाल एक तो जरूरी है कि जाको उत्तर भैया जानते भी हैं, और जब आप बताओगी तो भैया को पता भी चल जाएगी कि कब कब हमें उर्वरक की पूर्ति करना चाहिए और कैसे कैसे और कितनी मात्रा में देना चाहिए।
1: बिल्कुल रखो भैया।
0: तो क्षमा बहन देखो, अब जो सरकार है हमारी जो अभियान चला रही, बाकी आज आखिरी दिन है खेत बचाओ अभियान।
1: हाँ रघु भैया, देखो खेत बचाओ अभियान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी कृषि जागरूकता अभियान है, और इसका प्राथमिक लक्ष्य मृदा स्वास्थ्य की रक्षा करना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना, और वैज्ञानिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
0: देखो अगर जाके मूल अर्थ पे जाएं क्षमा बहन, तो जाको अर्थ जाए है कि जो हमारी भूमि है बाको रासायनिक उर्वरकन के प्रयोग से बचाने हैं और अपनी भूमि को जीवित रखने हैं, जिससे जा है कि आज हम बा में खेती कर रहे हैं, कल को हमारे बाली बच्चे खेती करें, और मतलब जो देश है हमारा देश बड़ी जनसंख्या को देश है,
1: हाँ।
0: ऐसे में जो है

0: ज्यादा खाद्यान्न की जरूरत हमें पड़ती है तो जा है कि सबके लिए रोटी मिल पावे बाय हिसाब से, और जब हमारी मट्टी सुरक्षित ना रही, खेते सुरक्षित ना रहेंगे तो हम कैसे सबके लिए उपलब्धता करावेंगे।
1: बिल्कुल रघु भैया, और जो ये जो योजना चल रही है खेत बचाओ अभियान, जाको जो मुख्य उद्देश्य है बात यही है कि हमें अपने मृदा के स्वास्थ्य को खास ध्यान रखने हैं, और जाके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मृदा को परीक्षण।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हमारे साथी अपनी मिट्टी को परीक्षण करवाए लेंगे तो वे जान जाएंगे हमारे मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है।
0: बिल्कुल, और भाई साहब से जब पूर्ति कर देंगे तो उनकी जो है मिट्टी अच्छी बनी रहेगी।
1: और देखो रघु भैया, अब आज दिन है मंगलवार, और मंगलवार के दिन हम लेकर आते हैं अपने साथियों का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। और आज भैया जायक्रम में हमारे स्टूडियोज में आ चुके हैं श्री राज सुवालका जी, और आज को जो हमारा हेलो किसान का विषय है वो है डेयरी उत्पादों का मूल्य वर्धन। और देखो रघु भैया, हमारे मिथिलेश भैया भी आ गए हैं स्टूडियोज में।
0: हाँ हा।
1: तो देखिए कौन से भैया की सबसे पहले कॉल आई है और उन्होंने अपनी कौन सी समस्या रखी है।
2: श्रोताओं नमस्कार, जैसा कि आपको पता है आज हेलो किसान में विषय है डेयरी उत्पादों का मूल्य वर्धन, और आपकी शंकाओं और समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राज सुवालका जी, जो वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी हैं ICAR IVRI बरेली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
3: नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार
2: जी। तो हम कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले ही कॉल्स लगातार आ रही हैं, हमारे एक श्रोता भी जुड़े हुए हैं जी। अपना नाम बताएं, आपने किसान वाणी कार्यक्रम में कॉल किया बताइए।
4: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं
2: जी। कठेरिया जी, अपना सवाल पूछें।
4: हमने सवाल चाहते हैं डेयरी फार्म से क्या क्या लाभ है इसके लिए, हम जैसे हमारे भी तीन भैंसे दूध देती
2: है। हाँ हाँ
4: हाँ, हमें उचित मूल्य मिल सके दूध का,
2: उचित मूल्य मिल सके।
3: बिल्कुल, नमस्कार जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे किसान जैसे आप लोग जैसे और भी किसान होंगे जो अपने दूध को बेचान करना चाहते हैं और उसका उचित मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उचित मूल्य जैसे भैंस का दूध है तो लगभग आपको 50 से 60 रुपए प्रति लीटर मिलता होगा। लेकिन इसी को अपन मूल्य वर्धन की ओर जाए, जो कि आज का हमारा विषय है, जैसे कि हम आप उसका पनीर बना सकते हैं अन्यथा, या कई दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने मार्केट में जानना पड़ेगा कि आपके मार्केट में किसकी जरूरत है, कि आपके पास में होटल है या कोई रेस्टोरेंट है जहां पर आप जाकर के उसको बेचान कर सके। जैसे पनीर का मार्केट है, आप जानते हैं आजकल बहुत मिलावटी पनीर मिल रहा है, लेकिन अगर आप शुद्ध पनीर बेचेंगे तो उसकी उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन लगभग 30 से 40 प्रतिशत भी मिल जाएगा
2: जी। तो और कुछ पूछना चाहेंगे कटेरिया जी?
4: हाँ, यही चाहते थे
2: जी जी,
4: डेयरी पर दूध देने से क्या बेहतर इसका खोया या पनीर बनाए इसका कोई?
3: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे आपके पास भैंस है तो भैंस का दूध तो काफी मूल्यवर्धक है, तो उसको आप खोआ पनीर इन चीजों में इस्तेमाल करें। उससे आपको इसकी अपेक्षा कि आप डायरेक्ट दूध दे रहे हैं, शायद आप अपने बेचान करते होंगे डायरेक्ट कस्टमर्स को, इससे बढ़िया आप है कि मूल्यवर्धन की ओर अपना कदम बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, आपको अपने गाय भैंसों और उससे बढ़ा सकेंगे अपने कारोबार को, और इसके लिए अलग अलग स्कीम्स भी गवर्नमेंट चला रही है तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं
2: जी। जी कठेरिया जी,
4: धन्यवाद
2: जी। धन्यवाद आपका भी कॉल करने के लिए। तो कई सारे श्रोता लगातार कॉल कर रहे हैं, उससे पहले हम एक बेसिक चीज जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं की तरफ से सर, कि कोई भी जो हमारे किसान बहन भाई हैं, एक और कॉल आ रही है, पहले कॉल ले लेते हैं जी। नमस्कार, आपने हेलो किसान में कॉल किया है।
5: हेलो किसान वाणी सर, नमस्ते
2: जी। नमस्ते, अपना नाम बताएं।
5: मेरा नाम है विजयपाल यादव।
2: विजयपाल यादव जी, मैं मिथिलेश बोल रहा हूं। और जी
5: नमस्ते सर जी।
2: नमस्ते नमस्ते, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज विषय डेयरी उद्योग से संबंधित है, और हमारे साथ स्टूडियो में राज सुवालका जी हैं, जो वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी हैं IVRI बरेली में, डेयरी उद्योग के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। अपना सवाल पूछिए।
5: भैंस से संबंधित जानकारी लेनी थी, उसके बारे में अच्छा सर, ये था डेयरी खोलने के लिए शुद्ध स्थान कहाँ पर होना चाहिए और कौन कौन सी शुद्ध नस्लें होनी चाहिए भैंस की?
2: अच्छा अच्छा,
5: वैसे हमारे पास है
3: जी, बिल्कुल,
5: तो उसको मैं
2: जी
5: एक दो भैंस है।
2: हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं
3: जी। बिल्कुल, आपने विजयपाल जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आपकी लोकेशन प्लांट की

और उसको साफ कैसे करें, एक साफ स्वच्छ कपड़ा लें, गुनगुने पानी से उनके थनों को धोएं, उनको अच्छे से फिर सूती कपड़ी से उसको साफ करें, उसके बाद दूध को लें, और दूध किस बर्तन में लेना है, आजकल हमारे किसान भाइयों को जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो प्लास्टिक के बर्तनों में रह लेते हैं, तो वो आपको पता है माइक्रो प्लास्टिक की आजकल परेशानी बहुत बढ़ रही है, तो उसको हमें पूर्ण तरह से दूर करना है, तो उसके लिए उसकी जगह हम क्या करेंगे, एसएस के बर्तनों को इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे बर्तन जो स्वच्छ

0: इसमें आपको लाभ होगा सब्सिडी का।
1: अच्छा,
0: दूसरी स्कीम है मुद्रा लोन। अगर आपको कम आपको लागत की जरूरत है, आपको कम पैसों की जरूरत है और कम कागजी कार्रवाई चाहिए और जल्दी लोन चाहिए तो ये लोन है, ये सब्सिडी नहीं है। मुद्रा लोन यानी जल्दी लोन चाहिए और कम कागजी कार्रवाई चाहिए तो उसलिए आप मुद्रा लोन पे जा सकते हैं। फिर नाबार्ड
1: की इसमें कुछ लिमिट है क्या मुद्रा लोन में?
0: जी, अलग अलग लिमिट्स है उसके अंदर, अगर जाएंगे तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। जी,
1: ठीक।
0: तो हर एक योजना के बारे में और आप और अधिक जानकारी हमारे केवीके से जुड़ के या फिर मेरे मेल आईडी पे आप क्वेश्चन सवाल करके मैं उसको जवाब आपको दे दूंगा।
1: हाँ, प्रोग्राम के अंत में आप ईमेल आईडी बता देंगे।
0: जी, तीसरी एक योजना है नाबार्ड की। आपने सुना होगा नाबार्ड बैंक जो ग्रामीण के लिए काम कर रहे हैं। तो डेयरी फार्म पहले से अगर आप किसी किसान भाई के पास और उसको बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। और सब्सिडी कैसे मिलेगी? थोड़ा समय लगता है उसमें, इस तरह से इंस्टॉलमेंट में आपको सब्सिडी मिलेगी। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी कि इतना मैंने कर दिया है और इतने मैंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। तो सरकार के लोग आएंगे, नाबार्ड के लोग, वो चेक करेंगे तब आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और एक एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम है AHIDF, जो बड़े प्रोसेसिंग प्लांट, जब मतलब कि 50 पशुओं से अधिक का कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं।
1: अच्छा,
0: तो
1: अच्छा।
0: तो ये जो चार स्कीम मैंने बताई वो केंद्रीय सरकार के द्वारा है मोस्टली। इसके अलावा भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है, जैसे कि मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना।
1: अच्छा,
0: नंदनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। तो इन योजनाओं के तहत भी आप जाकर के अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के थ्रू लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या ब्लॉक लेवल पे जाके हो सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर नियंत्रित आपको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या अपने जो भी आपके पास में कोई भी केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहां जाकर भी आप।
1: नहीं, जैसे कि अब केवीके बरेली के जो लोग हैं, केवीके है शहर में है यहाँ पे, और दूर दराज के गांव हैं, वहां से कई सारे किसान भाई बहन नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए क्या ब्लॉक लेवल पे सब
0: ब्लॉक लेवल पे हो सकता है,
1: वहां जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ कोई योजना है तो बता दिए। लेकिन जो भी होगा ऑनलाइन,
0: और उसको साफ कैसे करें? एक स्वच्छ कपड़ा लें, गुनगुने पानी से उनके थनों को धोएं, उनको अच्छे से फिर सूती कपड़ी से उसको साफ करें। उसके बाद दूध को लें, और दूध किस बर्तन में लेना है? आजकल हमारे किसान भाइयों को जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो प्लास्टिक के बर्तनों में रह लेते हैं, तो वो आपको पता है माइक्रो प्लास्टिक की आजकल परेशानी बहुत बढ़ रही है, तो उसको हमें पूर्ण तरह से दूर करना है। तो उसके लिए उसकी जगह हम क्या करेंगे, एसएस के बर्तनों को इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे बर्तन जो स्वच्छ,
2: मतलब क्या इसमें नया या इसको बंद कर देना
1: उचित है? कितने लीटर दूध देती है? करीब करीब
2: लगभग एक, कोई दे रही है मतलब 6 लीटर दे रही है, कोई 8 लीटर दे रही है, एक 4 लीटर दे रही है, इस तरीके से।
1: अच्छा,
2: कम ज्यादा है थोड़ा,
1: तो
2: कुल मिला के लगभग हो जाता है
1: मतलब
2: टाइम में,
1: हाँ,
2: करीब 15 लीटर के आसपास हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा, 5 भैंसे 15 लीटर, चलिए 20 भी मान लें तो भी मतलब आपको मुनाफा नहीं हो पा रहा अभी?
2: मुनाफा नहीं हो रहा है सर, बहुत घाटा है इसमें, क्योंकि भूसा चोकर ये चीजें होती जा रही
0: हैं। तो अभी जी जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूंगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं दूध का, अपना वेचान कहाँ कर रहे हैं?
2: दूध तो यही आसपास मतलब घरों में ही जाता है।
0: आपके आसपास वाले घरों में जाते हैं? दूसरी बात, आप अपना चारा क्या खुद का उगा रहे हैं या फिर आप बंदोबस्त कर
2: रहे हैं?
0: तो यही आपको, वही मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप कोशिश हो सके कि आपके पास जमीन हो साथ में तो आप खुद का चारा लगाएंगे तो ज्यादा आपको मुनाफा होगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि 60-70% आपकी जो भी लागत है वो तो उसमें जारी होगी चारे में, फिर आपको मुनाफा करने में थोड़ा मार्जिन

ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि वो डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट में जा रहा है, बाकी 70% तो केवल आप जैसे जो लोग हैं, दूधिया लोग हैं, बहुत दूसरे लोग हैं, वो ही बेचान कर रहे हैं। तो उनसे आपने जैसा कहा कि रोज एक ढर्रे पे हम चलाए जा रहे हैं, तो आज वक्त है कि हम बदलें और फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम इन पे अपनी पोस्ट डालें कि हम ये दूध इस तरह से फोटोज डालें, अपना अपने ब्रांड को बनाएं। एक और डेयरी उद्योग से जुड़ी एक और चीज है जो गलती कर बैठते हैं कोई किसान या फिर जब डेयरी उद्योग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, कि वो अपनी डेयरियों का नाम महालक्ष्मी डेयरी या फिर जो कॉमन है वो रख देते हैं। आप उससे आप

0: ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि वो डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट में जा रहा है, बाकी 70% तो केवल आप जैसे जो लोग हैं, दूधिया लोग हैं, बहुत दूसरे लोग हैं, वो ही बेचान कर रहे हैं। तो उनसे आपने जैसा कहा कि रोज एक ढर्रे पे हम चलाए जा रहे हैं, तो आज वक्त है कि हम बदलें और फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम इन पे अपनी पोस्ट डालें कि हम ये दूध इस तरह से फोटोज डालें, अपना अपने ब्रांड को बनाएं। एक और डेयरी उद्योग से जुड़ी एक और चीज है जो गलती कर बैठते हैं कोई किसान या फिर जब डेयरी उद्योग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, कि वो अपनी डेयरियों का नाम महालक्ष्मी डेयरी या फिर जो कॉमन है वो रख देते हैं। आप उसके उससे
1: आप सबकी शंकाओं का समाधान किया, बहुत सारी बातें बताई कि अगर आपको डेयरी का काम शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो कैसे आप कर सकते हैं, कुछ अड़चने जो आती हैं वो कैसे दूर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, जो लोग कॉल नहीं कर पाए हों, जिनकी कॉल नहीं लग पाई हो, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि सर आप अपनी कुछ संपर्क सूत्र बता दीजिए जिसके माध्यम से आपसे संपर्क कर सकें वो।
0: जी बिल्कुल, अगर आप मेरे श्रोताओं को, मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगा और खासकर आकाशवाणी के लिए धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम के तहत। बहुत अच्छा काम है, किसानों की तरफ हम पहुंच नहीं पाते कई बार, तो ये एक अच्छा माध्यम है जिसकी तरफ से हम पहुंच पा रहे हैं और जमीन से जुड़कर काम कर पा रहे हैं। और मैं अगर आप में से किसी को कोई भी परेशानी है कि किस तरह से हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना चाहिए या फिर पनीर बनाना है, तो साहब पनीर कैसे बनाएं, तो पनीर बनाने के लिए विधि है जो उसको साइंटिफिक तरीके से, घर में भी पनीर बनाया जा सकता है, हमारी माताएं बहनें और अच्छा जानती होंगी, लेकिन साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक रूप से और कम लागत में मैं कैसे बनाऊं जिससे मुनाफा ज्यादा है, तो उसके लिए आप हमारे आईवीआरआई के वीडियो चैनल्स पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा आईवीआरआई के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं कि साइंटिफिक रूप से पनीर कैसे बनाए, साइंटिफिक रूप से आइसक्रीम कैसे बनाए, तो वो वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं किस तरह से आप वैज्ञानिक तरीके से और शुद्ध और स्वच्छ एक उत्पाद कैसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर कुछ और शंकाएं मेरे श्रोताओं को होगी तो मैं चाहूंगा कि वो आप मेरे ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, मेरा ईमेल आईडी है rajsualka.ivri@gmail.com। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, rajsualka.ivri@gmail.com। धन्यवाद
1: जी। तो अब ईमेल आईडी भी मिल गई आपको, और फिर भी अगर आपकी समस्या ज़्यादा बड़ी है, नहीं समाधान निकल पा रहा है, तो बिल्कुल आप आईवीआरआई बरेली जाइए और वहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं, जो तकनीकी अधिकारी हैं, आप राज सुवालका जी हैं, आपसे भी मिल सकते हैं वर्किंग टाइम में, तो आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो राज सुवालका जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को और तमाम किसान बहनों भाइयों को, जो उनको जो समस्याएं थीं उनका निदान किया आपने और तमाम जानकारियां साझा की आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: और क्षमा बहन, अब बता दो बस सवाल को जवाब जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो।
2: तो भैया आज का सवाल हो, धान की फसल में पहला खाद कब और कितना डालें? तो भैया जाको सही जवाब है, धान की फसल में पहली खाद 20 से 25 दिन बाद डालें। प्रति एकड़ लगभग 35 से 40 किलोग्राम यूरिया और जरूरत के हिसाब से जिंक और सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान साथी।
1: और नसीहत का है चमा बहन?
2: आज के कार्यक्रम से भैया हमें जाहिर नसीहत मिलता है, रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करें और जैविक खादों का अधिक प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएं किसान साथी।
1: अब भैया हम दोनों भैया बहन की स्वीकार करो,
0: राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णामूर्ति और साथियों की आवाजों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

इल्जाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य, केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना, तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर समेत प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में रामपुर भी शामिल है, जहां पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान और युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
2: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
1: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं को भारत के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं भेंट की। इनमें मुरादाबाद के कारीगरों द्वारा निर्मित पीतल का कछुआ भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका

0: करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समृद्ध शिल्पकला के साथ ही हमारे कारीगरों का कौशल आज वैश्विक पटल पर नई पहचान गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पीतल नगरी मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों का बनाया हुआ पीतल का कछुआ सेशेल्स के राष्ट्रपति को भेंट करना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने प्रदेश की स्थानीय शिल्पकला को नई और भव्य पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
1: वो लोकमाता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के हर जनपद में कल से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक
0: में प्रवेश कर चुका है और आगामी 2 दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।
4: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र

0: और बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसे लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, अगले 2 दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
3: होगा क्योंकि

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं के और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

अभी आपने सुना पॉप गीत गुल सक्सेना की आवाज में। गीतकार संगीतकार थे किरण प्रगति और सौरभ ठाकुर।

साथियों, कार्यक्रम की अंतिम पेशकश सुनिए कनिका कपूर और विक्की चंदेल की आवाजों में। गीतकार संगीतकार भी हैं विक्की चंदेल।

0: ऐसी पर तो हेवन की चाबी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है।
1: आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौंध रही है?
2: अरे बिजली बिजली कहाँ कौंधी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि

0: जान से रुक जा, नहीं तो नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
1: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी।
0: बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, फिर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता।
1: हाँ, मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
0: राजा? कौन राजा?
1: है एक राजा। हाय, काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
0: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
1: लड़का? कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
0: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
1: अपने राजा के। ओ मंजू, हाउ ही लव्स मी।
0: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
1: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
0: ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है?
1: अरे मंजू जी जी, उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
0: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
1: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
0: दीपक? कौन दीपक?
1: हाँ, वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू। वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है। बस
0: सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
1: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
0: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हंसोड़ सा था।
1: अब मैंने गोरा बोरा लंबा उम्बा हंसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
0: ओहो, तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
1: थी? नहीं, आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ, हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
0: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है, आता है तीज त्योहार पर।
1: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय।
0: कर दिया।
2: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी,
0: हाँ।
2: वो आपकी बहन है ना?
0: हाँ।
2: उससे मिलना चाहता हूँ।
0: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
2: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
0: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
2: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
0: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
2: वो मेरा नाम जानती है?
0: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
2: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
0: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई। चल, कुछ कहेगा भी?
2: जरूर कहूंगा।
0: तो कहेगा?
2: कहूँ? कह दू भाभी? भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे, हाँ? मैं उनसे, हाँ? शादी करना चाहता हूँ। लो, कह दिया, हाँ, कह दिया भाभी।
0: कह दिया। अब जब अपने राजा के गुणगाया करती है।
2: राजा के? कहाँ के राजा के?
0: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहेंगे कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील चाचा ने कहां से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं की, छोड़ उसका ख्याल।
2: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा, इतनी कोमल।

0: गंभीरता इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने की।
1: अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, आप शीर से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
0: पर भाभी, ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
0: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी हैं। एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
0: क्या? हा?
1: मैं शील को बुलाती हूँ और सुन, उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने लगे।
0: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
0: अच्छा
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
0: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है। छुपे जा,
0: तुम छो भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानूं, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक
0: जी। जानता हूँ जी, जी, जी, मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत खास देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है, सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता

0: क्या होता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: आहा, क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते
0: हैं। शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी, क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना।

0: खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों
0: क्यों क्यों क्या राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं।
0: पता नहीं तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या? मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। अब वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
0: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए।
0: ओह माय गॉड, ये राजा इनका महबूब। सच में शील जी ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे भाई।
1: राजा राजा बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
0: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
1: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करते?
0: कभी नहीं कभी नहीं, तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
2: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुराज ने।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2

0: 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी ईओसीआई कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और एफसीआरए पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई ईओसीआई व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट

0: करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
1: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की

0: इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

जुल्फों में मुंह छुपा कर मुझको लुभा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शवान रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम सा।

0: बहुत लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा, एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीर जी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा

0: जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ढोल, ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

वफा, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्य हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे, प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में,
2: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कांग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को आप करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संग।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत

जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा, और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो वे एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबां से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: Player of the Match.
1: अभी आप आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित
2: स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग रागेश्री में अलका सिंह का बांसुरी वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग रागेश्री में अलका सिंह का बांसुरी वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में

सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज

0: 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen BG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of BG Ramji Act 2025, Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called